0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together,
7: it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
9: Are you looking for help in English, maths and science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
10: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
11: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
11: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
11: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152, Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
10: Park Foods, जो नाम है मायार का।
13: This is a public service announcement.
14: The station
15: that plays
14: foot tapping music.

है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
6: It's music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
6: I love it.

0: It's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
1: Hold on, miss. 2055? We'll be grown up by then.
2: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot, search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, maths and science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास?
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है? पार्क फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: This is a public service announcement.
11: The station
12: that plays
13: foot tapping music.
14: Huzzah 97.1 FM.
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: 4NW, Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: Attention!
2: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़।
8: You are listening 97.1 FM.

बिल्कुल आप जिंदगी रवा दवा है अपने जबरदस्त से मकासद की तरफ। और एक और सुबह हमारे पास लू हो चुकी है इस उम्मीद नौ के साथ कि आज का दिन बहुत ही जबरदस्त कमाल का और मोटिवेटेड सा रहने वाला है, क्योंकि गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में अक्सर चीजें डिस्कस की जाती हैं जो आपको पूरे दिन के लिए बूस्ट करती हैं, ऐसा मैं सोचता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली फिर आप मुझसे रब्ता करेंगे। रब्ता करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे स्टूडियो में लाइव एंटर होने का जो मेन वे है, जो मेन सोर्स है, जी दैट वन इज ओनली व्हाट्सएप। आई हैव 0115-7100-971। जितने भी हमारे नॉटिंघम शहर के वासी हैं उनसे गुजारिश है कि जब भी आप मुझे मैसेज करें इस नंबर पे तो अपना पोस्टल कोड और अपना नाम लाजमी मेंशन करें। अगर आप सिटी से बाहर हैं या नॉटिंघम शहर से बाहर हैं तो फिर डेफिनेटली आपने क्या करना है कि आपने अपनी सिटी का नाम मेंशन करना है। अगर नॉटिंघम से हैं तो कौन सी एनजी से हैं या बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यूके से भी बाहर हैं तो फिर आपको कंट्री कोड जनाब 0044 डायल करके उसके बाद ओ नील गाना फिर 5051 जनाब उसके बाद सॉरी 0115-7100-971 यानी 0044-115-7100-971। थैंक यू वेरी मच। मोहसिन दुबई से हमें ट्यून अप कर चुके हैं, आतिका अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक्स लॉट, ये भी दुबई से हैं। और जनाब हमारी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी एक लिसनर हैं अलिशबा, ये जनाब मुझे पहले ही मैसेज कर चुकी हैं, थैंक्स लॉट। और जितने भी हमारे यंगस्टर इस वक्त अवेलेबल हैं जो सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का, खूबसूरत सफर शुरू हो चुका है। कुछ गुजारिशात हैं जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, उनमें सबसे पहले यह है कि अगर आप ड्राइव करते हुए इस वक्त अपने मंजिले मकसूद की तरफ रवा दवा हैं और आप ये सुनना चाहते हैं गुड मॉर्निंग नॉटिंघम को, तो एफएम पे आप ट्यून करेंगे हमें 97.1 पे। इसके अलावा डैप पे आप फजा के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं और फिर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अलावा जी आपको मजीद बताता चलूँ कि अक्सर मैं कहता हूँ ना कि जनाब आप हमें सुन रहे हैं 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। ऐप पे आप कैसे डाउनलोड करेंगे जी? ऐप पे डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही आसान, बहुत ही उम्दा और बहुत ही कार आमद है। आपने जनाब जाना है गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल गया, अगर आप मैक की यूज़र हैं या आईफोन यूज़ करें तो फिर डेफिनेटली भी आपको पता चल जाएगा। वहाँ जाके नाब आप सर्च बार में लिखेंगे 97.1 एफएम ऑफिशियल रेडियो फजा के साथ। फिर आप एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर का माइक या पेज कलर का या येलो कलर का, डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कैसी है, आपके सामने आएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे, जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज टहरेगी आपकी स्मार्ट होगी नजर आपको कहते हुए गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

तो जनाब सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, अगर नहीं भी बताना चाहते तो कुछ हल्का फुल्का सा जहन में सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। कहते हैं ना कि अगर तुम किसी को याद करने के लिए सच्चे दिल से चाहो तो फिर खानदान की नहीं कायनात की पूरी ताकतें जुट जाती हैं उससे आपको मिलाने के लिए। जनाब बिल्कुल ग्रेट है सार के का ये खूबसूरत डायलॉग है जो मैंने कॉपी किया, मिमिक्री नहीं की। नेवर एवर कैन डू दिस वन, गुस्ताखी नहीं हो सकती। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप इमेजिनेशन में सोच रहे हैं तो फिर रिप्लाई भी कीजिए ना। अगर ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर ड्राइव करते हुए नॉटिंघम की खूबसूरत सी सड़कों पर, जितनी डिवेलपमेंट अब हमारी सिटी में हो चुकी है ना, अमेजिंग है, कमाल है। स्टूडियो में आते वक्त बहुत सी चीज़ें याद आती हैं और बहुत सी चीज़ें जहन में, रास्ते में चलते हुए रास्ते में कुछ ऐसे अजनबी लोग मिलते हैं जिनको देख के हल्की सी स्माइल की जाती है। और अब मेरे ना एक बहुत ही प्यारे से फ्रेंड बन चुके हैं, एक अंकल हैं ना, ज़बरदस्त से तरीके से बड़े स्टाइल से वॉक करते हुए आते हैं। और वॉक करते हुए ना अक्सर ये सोचते हैं, देखते हैं बड़े गौर से आंखों में आंखें डाल के, और उसके बाद जब पास आते हैं तो हम दोनों अब तकरीबन ना 2 वीक से ऑलमोस्ट ऐसा हो चुका है कि हम एक ही वक्त पे स्माइल करते हैं। यार कमाल का सुकून आता है, कमाल का मजा आ जाता है। और यकीन करें कि ऐसे स्वस्थ मॉर्निंग शुरू हो जाती है और उसके बाद माइंड चलना शुरू हो जाता है कि यार आज की मोटिवेशन क्या होगी, आज का सब्जेक्ट क्या होगा, आज की पर्सनैलिटी ऑफ डे कौन होगा। और डेफिनेटली प्रोडक्शन टीम तो हमारी बहुत ज़्यादा वर्क करती है और वो ऑलरेडी हमारा टॉपिक भी अनाउंस कर चुकी होगी सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। अलावा जी आपको बताता चलूँ कि ड्राइव करते हुए अब बात में वहीं वापस लेके आए, हमारी खूबसूरत सी जो नॉटिंघम शहर की सड़कें हैं, जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है वो लोग स्पेशली अक्सर केयर नहीं ना करते। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और इस इलाके के लोग हिले हुए होते हैं ना, हम लोग वहाँ पे भी ना, यार तू क्या पता है, तू क्या जानने, निकट ना जुल ऐसे कुछ लाइन यूज होते हैं। तो जनाब ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट्स बिकॉज ये इंग्लैंड है, यूके है जनाब, यहाँ पे आपकी नहीं चलेगी। एंड स्टे ट्यून इट फॉर 97.1 FM। लेकिन अगर आप कहीं कॉफ़ी के शौकीन हैं तो यार मुझे भी फिर डेफिनेटली डबल एस्प्रेसो का एक शॉट, अगर आप जो भी लवर्स हैं यार, अगर कोल्ड कॉफ़ी फ्रैपचिनो में आप जाते हैं तो यार माई फेवरेट वन एज वेल, एक मेरे लिए भी ऑर्डर कीजिएगा और उसके बाद ट्यून कीजिएगा 97.1 FM को।

बिल्कुल जी, मेरे बीजे में बीबी भी बार बार चीख चीख के कह रही है नेवर एवर से गुड बाय जी, गुड बाय बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागत है उन तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 FM पे या फिर डैल पे या फिर हमारी ऐप पे। ऐप का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी थी। लाइव स्ट्रीमिंग में क्या करेंगे आप, एड्रेस बार में लिखेंगे रेडियो फजा live.radiofaza.co.uk और उसके बाद फिर मैं आपको सुनता हुआ कहता हुआ मिलूंगा। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। तो बताइए जी, कल का दिन कैसा गुजरा आपका? वीक तो स्टार्ट हो चुका है, अब मिड ऑफ द वीक आ चुका है। डेफिनेटली कुछ इच्छाएं, कुछ इरादे, कुछ ऐसी चीज़ें जो पेंडिंग रह जाती हैं इंसान से, इंसान कभी उनको जुटला भी नहीं पाता। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंसान कोशिश करता रहता है कि मैं हमेशा समय के साथ भागूं, वक्त के साथ दौड़ूं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जनाब, ये विशेष टिप्पणी है मेरी। आज का जो टॉपिक है वो है जी वक्त, टाइम। सो अक्सर लोग कहते हैं जो बड़े लोग हैं फिर मेरी तरफ देखा ना आपने, या जब भी मैं बड़ा या सयाना का वर्ड यूज़ करता हूँ तो आप लोग क्यों मेरी तरफ देखते हैं? कोई बात नहीं, इतना भी बड़ा नहीं, नॉट दैट मच ओल्ड, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अब हम सीनियर सिटीजन में आना शुरू हो गए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच जनाब जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया और हल्का सा उन्होंने मुझे मैसेज किया, स्माइली भेजी है, थैंक्स अलॉट। आप कौन है ये भी बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं। जनाब बात में ही कह रहा था कि वक्त कितना वक्त इम्पॉर्टेंट है, वक्त के साथ हमें क्या करना चाहिए, वक्त के साथ तब्दीली कैसे आती है, इन्वायरमेंटल चेंज क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें तो हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक नहीं है। लेकिन वक्त को ज़ाया करना कैसा है और किन तरीक़ों से आजकल के दौर में, आजकल के एरा में, और स्पेशली हमारे ये जो यूके का या इंग्लैंड का या हमारे नॉटिंघमशायर का जो एक कल्चर है, हम किस तरह अपने वक्त को, वैसे तो यहाँ पे हर बंदा बिजी है जनाब, तीन तीन शिफ्ट में काम कर रहा है जनाब, IRR के चक्कर में पड़े हुए हैं अब उसके बाद होम ऑफिस कंप्लाइंस HMRC ब्लाबला काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। डेफिनेटली सिविलाइज सिटीजन है हम, और सिविलाइज मुआशरे से जब आप ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ती हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि हम अब भी जो मेरे एनालिसिस हैं उनमें हम किसी ना किसी जगह पर थोड़ा बहुत वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो जनाब स्पॉन्टेनियसनेस के साथ ज़बरदस्त सा जवाब दीजिए और बताइए कि हम कहाँ कहाँ पे वक्त ज़ाया करते हैं। अगर आप भी इन विचारों के मालिक हैं, अगर आप भी अपनी कोई विशेष टिप्पणी रखते हैं तो फिर मेरे साथ शेयर कीजिए 01157100971 पे। मीनवाइल जनाब कुछ ही समय के बाद हमारे दरमियान हायल होने जा रही कमर्शियल ब्रेक, लेकिन कमर्शियल ब्रेक से पहले मैं आपको बताऊंगा वेदर का सूरत हाल। जनाब ज़बरदस्ती वेदर की सूरत हाल क्या है, इस वक्त कंडीशन क्या है और आज रात को क्या होने वाला है, हम बताएंगे ना सब कुछ आपको। सो स्टे ट्यून्ड, एक मिनट के लिए जरा मैं आपसे वेदर रिपोर्ट डिस्कस कर लूँ।

तो ना दिल तो चाह रहा था कि मैं हल्का का भीगा हुआ हूँ और भीगा भीगा सा ये दिसंबर नहीं बल्कि सितंबर है ये ट्रैक भी चलाया जाए, लेकिन ये ट्रैक नहीं चलेगा जनाब। लाइट रेन एंड शॉवर्स एंड जेंटल ब्रीज, बिल्कुल जनाब। 18 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 13 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रिकॉर्ड किया गया। फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल 46%। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जनाब शाम तक आपके पास 5 बजे तक बारिश रहने के कवि इम्कान है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं, ये समझते हैं, ये समझते बूझते हुए आपके आज रात को क्या होने वाला है, मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब आज रात को टर्निंग लार्जली क्लाउड टू नाइट बट स्टेइंग ड्राई फॉर अ टाइम, अर्ली आवर्स विद डॉन अ फ्यू लाइट स्पॉट्स ऑफ रेन विल पुश इन फ्रॉम द वेस्ट, क्लियरिंग इन टू टुमारो मॉर्निंग। जी बिल्कुल, सुबह तक बिल्कुल मतलब जो है वो साफ हो जाएगा, अगर अलूद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप किसी जगह पे जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन है, कोई ओरिएंटेशन है, या आप बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप बारिश लवर हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं बारिश जरूर मिलेगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ स्टे ट्यून्ड फजा 97.1 FM, इंजॉय कीजिए। थोड़ी देर के लिए बीजिए, एक कॉल भी है उसको भी लेते हैं, देखते हैं हो सकता है लाइव कॉल हो।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डेव के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम जी स्वागतम है। ये जनाब स्वागत किस लिए? स्वागतम है जनाब उन समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, या उन जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे वासी हैं नॉटिंघम शायर के, जिन्होंने इस वक्त चलते चलते हमें ट्यून अप किया। थैंक्स अलॉट फाखरा जी, द ग्रेट मेंटोर एंड ऑलवेज सपोर्टिव अवेलेबल हैं। उमर भाई यू आर द ग्रेट, थैंक्स अलॉट एंड द बॉस एज वेल। थैंक्स अलॉट जनाब जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे। तंजो मजा तो हल्का हल्का साथ साथ चलता रहेगा जनाब। विशेष टिप्पणी आपको मैंने अपनी शेयर की थी, अपने विचार मैंने शेयर किए थे, आपकी सोच की धारा किस समय किस समत में बहती है, समय के साथ साथ वक्त के साथ साथ, ये है जनाब आज का टॉपिक और आप भी इस टॉपिक में मेरे साथ शामिल हैं। तो जनाब सबसे पहली बात, बड़ी ज़बरदस्त एक बात है जो अक्सर मैं आपके साथ करता नहीं हूँ क्योंकि टॉपिक आज का वक्त है, करने जा रहा हूँ। कहते हैं यार रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना यह है कि चिरागों का सफर कितना है। क्या बात है जनाब, जबरदस्त कमाल यार, वेरी वेरी थैंकफुल टू जनाब, थैंक्स लॉट जनाब जिन्होंने ये मुझे मैसेज किया है और जबरदस्त तरीके से उन्होंने वेलकम किया है। जनाब आपको भी वार्म वेलकम है शो में। आई थिंक अब ना व्हाट्सएप पे बताया आपको नेम लिखा हुआ आता है तो मैं नाम पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन थैंक्स लॉट जिन्होंने भी नाम ये मुझे मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत ही कीमती, बहुत ही ज़बरदस्ती बात आपने की। चलें इसी को लेके आगे चलते हैं जनाब वक्त के हवाले से, और आपको ये बता दें कि इंसान निराश कब होता है। दो चीज़ें आती हैं, अगर हम मोटिवेशन को लेकर चलें या फिर हम कुछ अपने विचार लेकर चलें। नेक्स्ट सेगमेंट्स जो हैं मेरे अगले पूरे घंटे के जो चंक्स में आपको बताया, एक तो हमारा फिजा हैक होता है, फिजा आइडिया जिसको आप बड़े शौक से सुनते हैं, आज का भी आइडिया देखेंगे, वक्त के हवाले से कुछ चीज़ ढूंढेंगे आपको बताएंगे, ढूंढ चुका हूँ वैसे ही आपके लिए, सस्पेंस डाले थोड़ा सा, और उसके बाद देखेंगे हमारे साथ आज की पर्सनैलिटी कौन सी होगी, पर्सनैलिटी ऑफ द डे। तो जनाब ये दो चीज़ें भी आपके पास मौजूद हैं गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में, अपने साथ रहिएगा लाजमी लाजमी लाजमी। उसके बाद ये मैं बता दूँ आपको कि जितने भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने कोशिश करनी होती है कहीं ना कहीं वक्त को बचाने की। अगर हम देखें ना कि हम किसी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं तो कुछ सयाने लोग अक्सर ये बात करते हैं कि यार एक साल जो है ना वो कम हो चुका है आपकी लाइफ से, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं कि जो ज़िंदगी अल्लाह की ज़ात ने दी है, जो ऊपर वाले ने हमें नवाजा है, जो ऊपर वाले ने हमें इतना ज़्यादा मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इंजाइल करना, उसके बाद ऑक्सीजन को इनहेल करना, और उसके बाद जनाब आप ये कह लें कि पूरा एक सिस्टमेटिकली जनाब जो निज़ाम है, जो मैग्नेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी का, इम्यून सिस्टम है, रेजिस्टेंस पावर है जिसको कुव्वत मुज़ाहमत कहते हैं, कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बिल्ट इन है। एक कंप्लीट मशीन जिसको आप कह लें कि एक इंसान नुमा हस्ती इस दुनिया में रहती है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसको अशरफुल मखलूकात यानी अकल जैसी नियामत भी अदा की है। ब्लेसिंग्स तो और भी बहुत हैं, उन ब्लेसिंग्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो नियामत है वो हमारे पास अक्ल की है। ये वो सिफ्ट है, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हजरत इंसान को ऊपर वाले ने कहा था कि ये मेरा नायब है, ये मेरा खलीफा है, क्योंकि फरिश्ते सिर्फ इबादत करते हैं, चिरिंद परिंद जहान में हर चीज़ उसकी इबादत के लिए मुख्तस कर दी गई है। इवन के सेवन गैलेक्सीज में कोई भी जगह ऐसी नहीं जो उसकी इबादत से या उसकी अवेलेबिलिटी से महरूम रही हो, हर जगह पर है, इवन के हमारे शहर से ज़्यादा भी वो करीब है। अब सिचुएशन ये है कि हम जब अकल को नापते हैं या तोलते हैं या तराजू में रखते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ दुनियावी यानी मादी चीज़ें होती हैं। हम मैथ को देखते हैं बेसिकली, और देख के हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार इस बंदे ने अपना वक्त बहुत ज़्यादा सेव किया है या अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया है, अपने वक्त को सही यूटिलाइज़ किया, और यूटिलाइज़ करने के बाद इस बंदे ने इतनी ज़बरदस्त जनाब वो इसने रखी हुई रेंज रोवर, इसके बाद इसका बहुत अच्छा घर है जनाब फ्लाइन जी में, जहाँ पे बंदा कुछ सोच भी नहीं सकता घर लेने की, फॉर एग्जांपल, या किसी और जगह पे भी रह रहे हैं वर्ल्ड वाइड कहीं भी, आपके कज़न रिलेटिव्स कहीं भी, तो हम इसको जज करते हैं जितने भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे लेके। लेकिन कोशिश क्या करनी चाहिए, हमें कोशिश हमें ये करनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अकल ऊपर वाले ने दी है, अगर हम उसका
यूज इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी को जज करें, देन यू आर नॉट अ जज. फर्स्ट ऑफ ऑल, जजमेंट आपकी आपके लिए नहीं हो सकती, आप किसी और के लिए क्या कर सकते हैं. आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, इंसान किस तरह कब किस पर्सनैलिटी में चला जाता है किसी को कुछ समझ नहीं आता. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो महापुरुष होते हैं, जिनको ना अक्सर बंदा देख के या सोच के या समझ के ये नहीं कह पाता कि यार इस बंदे के पास वक्त ज़ाया करने के लिए कुछ है. हर वक्त बिजी रहते हैं, लेकिन उनको किसी इस्तलाह में लुक बिजी एंड डू नथिंग वाली पर्सनैलिटी भी कहा जाता है. लेकिन बहुत कम ये लोग होते हैं जो वक्त ज़ाया नहीं करते. हमारे बॉस या कोई भी आप ले लें, जब इनको मैसेज करें कि वी नीड सम अर्जेंट वर्क, सो जब आप वर्क के हवाले से बात करेंगे, देन दे आर गोना रिप्लाई यू ओके आई एम अवेलेबल. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको ना कोई बात करने का दिल करे, कोई मशवरा लेना हो, कोई एडवाइस लेनी हो, तो फिर उन लोगों के पास इस चीज़ का भी वक्त नहीं होता. वक्त ज़ाया करना, हमारे पास कहाँ से ऑप्शन आती हैं? हमारे पास ऑप्शन आती हैं हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे मोबाइल फ़ोन से. ये एक ऐसी चीज़ है जनाब जो कहीं ना कहीं हमारे पास काम में तो बहुत अच्छे तरीके से आती है. लेट्स से आप 25% से 50% 75% 80% तक आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं कि ठीक है जी, ये आपके पास अवेलेबल है और आप इससे बहुत अच्छा यूज़ करें. आपका बिजनेस इस पे चल रहा है, आपकी कॉल्स हैं, आपका वर्क है, आपका स्केड्यूल है, नोट्स है, वट एवर, ई मेल्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हर चीज़ आप इससे ले रहे हैं और इसको दे रहे हैं आप. ठीक है, डेफिनेटली कायनात का रूल, यूनिवर्स का रूल है कि इस हाथ दे और उस हाथ ले. अब सिचुएशन क्या बनती है कि हम डिस्ट्रैक्ट कहाँ पर होते हैं. हम स्पेशली जब कोशिश करते हैं, टिकटॉक पे चला गया, लिंक्डइन पे चला गया, इंस्टा पे चला गया, और उसके बाद हम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं ना चाहते हुए भी. अब हमारा माइंडसेट हमें क्या कह रहा होता है कि यार तू 18 घंटे से बिजी है, तू 20 घंटे से बिजी है. अगर आधा पौना घंटा या एक घंटा तूने इसको स्क्रॉल करिया तो कोई फ़ायदा नहीं. लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये जो आपका माइंडसेट आपको एक तसल्ली दे रहा है, वक्त ज़ाया करने की तरगीब दे रहा है कि आधा पौना घंटा या घंटा, तो हमारे माइंडसेट में आते हैं ना दो दो ढाई ढाई तीन तीन घंटे भी. मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं, यकीन करें कि कल कोस्टा में एक बंदे से हमारी मुलाकात नहीं बल्कि मैंने जज किया उसको. आई विश के मैं वीडियो बना सकता, लेकिन क्योंकि गैर अखलाकी मौजबाना तरीका नहीं है इस तरह चुप के वीडियो बनाना. कुड यू बिलीव के कॉफ़ी, मतलब आई थिंक ही ऑर्डर कैपेचिनो और समथिंग. बिल्कुल यकीन करें कि ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स वो कॉफ़ी उसके टेबल पे पड़ी, बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी हो चुकी थी. ठीक है, और उसके बाद उसका जो फोम है वो भी काफ़ी हद तक बैठ चुका था. लेकिन उस बंदे ने सिर्फ स्क्रॉल, यानी अंगूठा ऊपर नीचे चल रहा है. मे बी ही इज़ वेरी बिजी, कुछ कर रहे हो. लेकिन ये मेरा एक कॉन्सेप्ट आया था कि वहाँ से मैंने ये सोचा था कि कल का जो टॉपिक रखूँगा, वक्त रखूँगा, कि 45 मिनट्स हमने कुछ मीटिंग की, कुछ डिस्कशन की, कुछ क्लाइंट के साथ गपशप थी, कुछ एडवर्ट के हवाले से, सब कुछ हो गया. लेकिन उन मोहतरम ने अपनी आंख तक नहीं चपकी. यहाँ से शुरू होता है बेसिकली हमारी ना चाहते हुए भी बर्बादी का सफ़र. लेकिन हम कैसे इसको सोच सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने लोगों को सेव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास ना रहते हुए भी, ना चाहते हुए भी बनती हैं, रुकती हैं. लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम उनको समझा नहीं पाते. और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम इंसान को बहुत कुछ सिखाता भी है. जहाँ पे हम ज़ाया करते हैं ना टाइम, अभी देखें ये एक ऐसी विशेष टिप्पणी है, ये एक ऐसी राय है, एक ऐसा विचार है जिससे आपने तो सोच लिया, मैंने भी सोच लिया कि यार टाइम इज़ अ मनी. ठीक है जी, टाइम हमें बचा भी रहा है, टाइम हमें बर्बाद भी कर रहा है, टाइम हमें डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने अपने आप को रखने का मौका भी दे रहा है. वक्त हमें चांस ज़रूर देता है, लेकिन हमारे पास वो चांस लेने के लिए वक्त नहीं होता. वो वक्त हमारे पास हाथ से निकलता जाता है, और बिल्कुल ऐसे जैसे रेतनी जार में से निकलती है. अक्सर गेम्स में भी और पबजी वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें होती थी जब किसी दौर में हम खेलते थे. इस चीज़ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आई एम नॉट दैट मच ओल्ड. लेकिन वो एक बात है कि ऐसे वक्त हमारे हाथ से ज़ाया, एक एक दिन कीमती है. और उसके बाद आपके पास जो टारगेट्स हैं, आपके पास जो अचीवमेंट्स के लिए जो गोल्स हैं, वो गोल्स आपके पास डिफरेंट तरीके से मैनेज करने के लिए भी वक्त नहीं.
गोल्स आपको याद हैं, लेकिन आपके पास मैनेजमेंट रियली वर्क नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। इवन मैं अपने आप को किसी दौर में बहुत अच्छा मैनेजर समझता था, लेकिन टाइम, कहते हैं ना सर पता ही नहीं चलता, टाइम बिल्कुल नहीं। अभी यार 5 साल 7 साल 8 साल पहले, 2 साल पहले हम अपने होमलैंड से, अपनी कंट्री से इस जगह पे आए थे, इस देश के प्रदेश में, इस प्रदेश के देश में, और अब कंडीशन ये है कि हमें वक्त का नहीं पता चला। क्यों? 3-3 शिफ्ट कर रहे हैं, कोई कैर की जॉब कर रहे हैं, फिर कैबी भी हैं भजन साथ, उसके बाद फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम भी कर रहे हैं, कोई पैकिंग फैक्ट्री में है, कोई सेलमैन है, ब्ला ब्ला ब्ला, हर जगह पर 2-2 3-3 शिफ्ट करने के बाद हम अभी तक अपने कर्ज उतार रहे हैं, हम अपने जात के कर्ज उतार रहे हैं, पैसे की शक्ल में हर चीज की, और आगे बढ़ने की जो तगोदो है वो हमारे पास सिर्फ इतनी है कि हमने लाइसेंस लेके, प्रोविजन नहीं लेके लाइसेंस, हमने गाड़ी लेनी है, उसकी एमआई पे करनी है, मॉर्गेज करनी है, उसके बाद अपने बच्चों को हमने ब्रिटिश लाइफ देनी है, या यहाँ पे अपने यूरोप में, यूएसए में, कहीं भी है। अलगर्ज हमने ये सोचा कि हम जो अपनी असलाफ, जो अपनी अकदार, जो अपनी सकाफत पीछे छोड़ के आए हैं, उस सकाफत ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें दी है, वक्त दी है, जो हम ज़ाया कर चुके हैं। अब इस दुनिया की जो स्पीड है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सेटल होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप ये जज कर लें कि आपके पास जो मनी है वो वक्त की सूरत में है या नहीं है। पैसा आपने बहुत जगह पर इन्वेस्ट कर लिया, आपसे हर जगह से पैसे आ रहे हैं, इनकम वापस आ रही है, आप यूज़ कर रहे हैं उसको, लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब आप ना चाहते हुए भी उन लोगों पे डिपेंड करते हैं जो लोग हमेशा आपके लॉसेस में रहते हैं, आपके नुकसान में रहते हैं, या ना चाहते हुए वो आपका नुकसान करते हैं, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी आपके बारे में इतना डीप सोचे कि वो आपको नुकसान दे। हाँ, मे बी ऊपर से, या आप कह लें कि कुदरत में अगर ऐसा कुछ है तो नादानी की वजह से लॉस हुआ या कुछ हुआ, तो आप उस व्यक्ति को, उस दोस्त को, उस रिलेटिव को उस वक्त समय के हवाले से दोषी करार दे देते हैं, आप जजमेंटल बन जाते हैं, आप जज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि यार ये वक्त ही मेरा ना हो, फिर भी हो सकता है, लेकिन मौलाली का कोल है ना कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना बेवकूफ़ी होती है। अगर आप उनको दोबारा आजमाना चाहते हैं तो ये फिर आपकी ग्रेटनेस है, या आपके ऑरा की वो पर्सनैलिटी, आपके ऑरा की वो चीज़ है कि जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग खुश होते हैं आपको देख के, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपसे मशवरा करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो आपसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बैठ के डिस्कशन करें, कि बिजनेस मैनेजमेंट पर करें, किसी ख्यालाती मतलब तसव्वुराती दुनिया पर करें, किसी विजनरी सब्जेक्ट को लेके करें, या किसी मशीन को लेके चलें, फाइनेंस को लेके करें, अकाउंट्स को, ब्ला ब्ला ब्ला, हर चीज़ इंसान के पास रहती है। फिर ऊपर वाला वक्त के साथ साथ हर इंसान को, हर व्यक्ति को ताकत देता है। वो ताकत क्या होती है? बात समझाने की। वो ताकत क्या होती है? बात सुनाने की। वो ताकत क्या होती है? बात को असर, जो बातों का असर है वो आपके दिल के अंदर, आपकी रूह तक पहुंचे, तो फिर आप सुन सकते हैं, फिर आप सुना सकते हैं। और सुनना बहुत हिम्मत का काम होता है, बहुत बड़ा काम है सुनना। जमीन यकीन करें, आप जैसे मुझे सुनते हैं ना, मैं बीजीएम भी यूज़ नहीं करता, मुझे ट्रैक्स प्ले करने की भी याद नहीं रहती। एनीवे जनाब, बेहद शुक्रिया आपकी समातों का, इतनी खूबसूरत अंदाज से आपने मेरी जो एक कंप्लीट लाइन थी उसको सुना। कुछ ट्रैक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हल्की फुल्की गपशप तो मैं करता रहता हूँ साथ साथ, और उस गपशप के साथ अब क्योंकि बारिश का भी मौसम है, कुछ लोग ड्राइव करते हुए भी सुन रहे हैं, और डेफिनेटली आप ये ना सोचे कि आप मुझे सुनते हुए अपना वक्त जाया करें। बीजीएम मैंने चेंज कर दिया है जनाब, खूबसूरत से ट्रैक हमारे पास है।

लें जनाब, निचोड़ निकाल लिया जिंदगी का, किसी को प्यार दे दें, किसी का ले लें, यही जमाने में कामयाबी की जबरदस्ती सीढ़ी है। अभी भी ना जान भी आपके लिए हाजिर है। 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी जो विशेष टिप्पणी, अपने विचार है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मुझसे शेयर कीजिएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना, स्टे ट्यून्ड विद फजा 97.1 FM, उसके साथ साथ स्टे पॉजिटिव एंड स्टे एनर्जेटिक, बिकॉज आई एम हियर टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। 97.1 FM ऑल द वे फ्रॉम नॉटिंघम, this is your favorite show, Good Morning Nottingham.

जनाब बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपसे मिल के, और भी बड़े सारे काम हैं। अरे वर्ष भाई थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि जनाब बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपना। धीरे धीरे से ना बिल्कुल हमें डिस्टर्ब करना है आपने, ज्यादा शोर नहीं मचाना क्योंकि हम वक्त जाया करने वालों में से नहीं है। ले जमीन ट्रैक्स एंजॉय कीजिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रैक्स के उस पार होगी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक से उस पार जब मैं वापस आऊंगा मेरे साथ सेगमेंट होगा डिफरेंट, लेकिन ट्रैक्स नहीं होंगे, लेकिन बाद में ट्रैक्स दोबारा प्ले किए जाएंगे। तुमको क्या थी खबर? अगर कोई अकेला है तो फिर ये ट्रैक एंजॉय कीजिए। 97.1 FM को ट्यून करने का बेहद शुक्रिया। गुड मॉर्निंग नॉटिंगहम।

बिल्कुल ना, मैंने आपके जीवन में सवेरा लाया, लेकिन ये मैसेज पढ़ना बेहद जरूरी है। यकीन करें फाखरा जी, थैंक्स अलॉट आपकी इतनी प्यारी कंसल्टेशन का, और यकीन करें कि यू मेड माई डे। ये मैसेज पढ़ना बेहद जरूरी है, सुनिएगा इस मैसेज को। सफर तवील, गहरे बादल, रास्ते दुश्वार। थैंक यू वेरी मच नासिर जी का फुल ऑफ एनर्जी शो, साथ चले साहिबां की तरफ। बेहद शुक्रिया जनाब, ये जो मैसेजेस आप लोगों के आते हैं ना, जिस तरह जो हमारे सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं या सीनियर प्रेजेंटर्स हैं या ब्रॉडकास्टर हैं, वो गाने सुनते हुए भी अगर बोल सकते हैं ना, तो फिर आपने ये चीज किसी ना किसी से सीखी है। एनीवे ये बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, उसके बाद और मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को जबरदस्त तरीके की नई चीजें बताएं, क्योंकि हम बैठे ही इसलिए कि सर्च करके, आपके पास टाइम नहीं है ना सर्च करने का, तो सर्च करके एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के सेगमेंट के साथ आप तक पहुंचे, यही है हमारा लक्ष्य, यही है हमारा बेसिकली जो फोकस है, यही है हमारा वजदान। सो स्टे ट्यून, एंजॉय कीजिए ट्रैक्स को भी, और ठीक 5 मिनट या 7 मिनट के बाद मैं दोबारा आपको हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा, अनाउंस करनी है ना कमर्शियल ब्रेक। स्टे ट्यून एंड योर होस्ट इज राइट हियर।

0: बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ठीक कहा। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, क्योंकि वक्त का टॉपिक है और वक्त भी रही है। एनीवे, इनफ थैंक्स अ लॉट, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। ये 97.1 एफएम पे गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत सा शो अभी हमारे दरमियान हाइल होने जा रही। कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के उस पार वापिस आएंगे। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत सा सेगमेंट होगा पर्सनैलिटी ऑफ द डे। एंजॉय द कमर्शियल।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े

0: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम।
1: जबरदस्त, मैं उनसे रابطہ करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
0: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
2: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑल द वे फ्रॉम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम स्वागतम स्वागतम स्वागतम उन समातों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे। अरे बहुत ही यूज वर्ड हो चुका है उन व्यक्तियों के लिए, उन हजरात के लिए और उन साहिबान के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। एक बार फिर से रिफ्रेश किए देता हूँ आप

0: की याददाश्त को कि जनाब ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, ऐप पे जाने के लिए, ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके टाइप करेंगे रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल सर्च बार में, और फिर जनाब जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन वाइट पेज या येलो कलर में, डिपेंड करता है आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। अगर तो आप अच्छी रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं या अच्छा फोन है तो फिर तो आप गोल्डन कलर में नजर आएगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए, और जब आप प्ले करेंगे तो गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में खूबसूरत सा आपका स्वागत करने वाला आपका मेजबान आसिफ खान रहेगा आपके साथ। तो जनाब बहुत शुक्रिया लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, आपको बताते चले live.radiofeather.co.uk इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का धमाका, एंटरटेनमेंट का सेगमेंट और इन तमाम चीजों का एक पूरा बंडल, पूरा पैकेज लिए आपके साथ आपका मेजबान मौजूद है। तो जनाब टॉपिक हमारा आज का वक्त है, मैसेजेस भी आ रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझसे रابطہ करेंगे। लाइव कॉल्स भी इस नंबर पे आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप की लाइव कॉल कीजिए और शामिल हो जाइए हमारे साथ गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में। ना वक्त के हवाले से अगर आपकी कोई विशेष टिप्पणी है, आपकी कोई राय है, आपकी कोई सोच है, आपके कोई विचार हैं तो फिर मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं बाकी लिसनर्स के साथ, बाकी जितने भी हमारे पुरुष हैं नॉटिंघम शायर से सुन रहे हैं या बाहर से सुन रहे हैं, उनको ये बता सकूं कि भाई फलां बंदा भी अच्छा सोच सकता है या खाली मेरा ही टेका नहीं है। एनीवे थैंक्स अ लॉट जनाब। ज़बरदस्ती एक चीज़ है, अब जो जैसा आप जानते हैं कि कुछ टाइम में बात करूंगा उसके बाद हमारा जो सेगमेंट है वो है पर्सनैलिटी ऑफ द डे। लें जी सामीन, आपको जैसा बेहतर पता है कि पर्सनैलिटी में कौन सी पर्सनैलिटी होती है हमारे साथ, ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, जिन्होंने टाइम की कदर की है, जिन्होंने समय को ये समझा है कि ये बहुत ही कामयाब और बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ऐसे लोग हम अपने अंदर शामिल करेंगे, पूछो तो जाने। आप मुझे बताएंगे कि आज की पर्सनैलिटी कौन सी हो सकती है। हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा जनाब, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सेलिंग, इस चीज़ से इनका जनाब बहुत गहरा लगाव है, बहुत ज़बरदस्त लगाव है। साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं जनाब। ये हिंट इज मोर देन एनफ, बाकी बातें हम समय के साथ साथ करेंगे। तो जनाब एक छोटा सा मैसेज है बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे लिसनर्स हैं उनकी तरफ से, कि जनाब उन्होंने ये लिखा है, वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ जाता है। अरे बेहद शुक्रिया जनाब, थैंक्स लॉट, आपने तो समस्या ही हल कर दी, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी विशेष टिप्पणी, बहुत ही खूबसूरत विचार, बहुत ही प्यारी बात आपने हमारे साथ शेयर की, थैंक्स लॉट। शायद अकरम साहब हैं क्योंकि अक्सर ये ऑन एयर होते हैं लेकिन बहुत खामोशी से सुनते हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार मेरे तलफ़ुज ठीक करवाए हैं, मेरी हे नून काफ की नोक पलक बड़ी बार संवारी है, थैंक्स लॉट। अगर आप वही हैं बेहद शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, थैंक्स लॉट। और जो भी हमारे साथ इस वक्त नॉटिंघम शहर से हमारे लिसनर्स मौजूद हैं, ये बात एक बार फिर से दोहराई देता हूँ कि वक्त जनाब आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, ट्रैक से पहले काफ़ी लंबी बात चली हमारी समय पे, वक्त पे, इसमें एक चीज़ ये भी है, ये पानी बड़ा वक्त को ना, अगर हम लें कि बह रहा है यानी चल रहा है, पानी की तरह बह रहा है, निकल रहा है हमारे हाथों से, तो एक वक्त ऐसा आता है सामीन कि जब हम इसमें डूब जाते हैं। वो बेसिकली वो डूबना नहीं है जो दरिया में या समुद्र में बंदा डूबता है या चुल्लू भर पानी में, वैसी बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा। वक्त के समुद्र में डूबना बेसिकली वो गोता खोर, वो गोता लगाते हैं जो आजकल हमारे लेजेंड्स होते हैं, वो उसकी गहराई से जाके वो खूबसूरत मोती निकाल के लाते हैं, वो खूबसूरत जुगनू जो पानी के अंदर भी चमकते हैं, वो सलाहियतें लेके आते हैं, वो चीज़ें लेके आते हैं जिसकी वजह से हम आज उनके मरहूने मिन्नत होते हैं। दुनिया में जितनी भी आप टेक्नोलॉजी की चीज़ें देख लें, आजकल का दौर देख लें, हम मॉडरेट होके रह रहे हैं, साफ सुथरे होके रह रहे हैं, सिविलाइज्ड माशरे में हम रहते हैं, ये सब ब्लेसिंग्स के साथ साथ उन लोगों की अंतक मेहनत भी है जिन्होंने वक्त के समुंदर में गोता जन हुए, जिन्होंने गोता लगाया और उन्होंने बताया कि भाई इसकी गहराई से आप क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अहज कर सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन इनके पास से मिल सकती है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के पास से मिलती हैं जो लोग हमेशा वक्त की कदर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और काम में अपने आप को मगन रखते हैं। मेरी अपनी एक राय है, छोटी सी राय ये है कि अगर आज से हम 20 साल या 25 साल पहले जाएं, या जो मेरी तरह के जो लोग हैं जो 90 या 95 के बाद का जो दौर है, उस दौर में जो लोग आए हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो आज से 20-25 साल पहले, जो बड़े हमारे लिसनर्स हैं वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, लेकिन जो हमारे यंगस्टर हैं उनको ये चीज़ नहीं मिली। जिंदगी की लाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ है, हमारे बच्चे, हमारे फ्यूचर, हमारा अगली नस्ल या हमारी करंट नस्ल जब मार्केट में आएगी तो उनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इनके चैलेंजेस वक्त की एक एक सुई के साथ मैच करें। लेकिन हम अभी अगर ड्राइव करते हुए कुछ ना कुछ प्लान करें, बोल तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फोकस ड्राइविंग पे करें, कुछ भी मत सोचें। लेकिन अगर लॉन्ग ड्राइव पे मोटरवे जा रहे हैं या आप दूर दराज के इलाके में जा रहे हैं तो फिर उस वक्त को भी ज़ाया ना कीजिए। लोग अक्सर होते हैं ना, ट्रैक्स लगाते हैं, गाने सुनते हैं, 97.1 FM सुनेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट भी। तो उसमें होता कैसा, मैं उसमें होगा ये कि हम ये सोचेंगे ज़रूर कि अब ड्राइव में कर रहा हूँ, मैंने क्या प्लान कर रहा है, मैं फ्लॉ मीटिंग पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, हर चीज़ का हम प्लान करते हैं वक्त को मैनेज करके, वक्त के साथ साथ। लेकिन सबसे जो अचंभे की बात है, जो सबसे हैरानगी की बात है कि हमें अपने अगले लम्हे का नहीं पता। कितनी कमाल की बात है कि हमें अपने अगले लम्हे का नहीं पता। हर बंदा इस, हर व्यक्ति इस चीज़ से बिल्कुल जनाब मेरे साथ एग्री करेगा और डेफिनेटली आप लोग एग्री करेंगे कि हम वक्त को पीछे छोड़ आते हैं, लेकिन हम हो सकता है कि इस दुनिया से भी उस पार निकल जाएं, जहां वक्त बहुत तेज़ी से चलता है, जहां पे एक रात एक दिन 50,000 साल तक के बराबर होता है। और हो सकता है कि कुछ हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें हुई हैं जब लोग इस बड़े दुनिया से, यानी एक बड़ी ज़ाया करने वाली वक्त की दुनिया से निकल के कारामत दुनिया में गए, और कुछ टाइम के बाद जब वो वापस आए तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि वक्त बहुत तेज़ी से निकल गया था। जो उनके साथ के लोग थे वो बूढ़े होके मर भी चुके थे, लेकिन वो वापस आए तो फिर वो एक रवायात कह लें, आप स्टोरीज कह लें, सिर्फ और सिर्फ इंसान को सिखाने के लिए, या हकायात कह लें। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गवार हैं, जो बड़े हैं, ये लिखते हैं, ये लिखने के लिए बड़ी ताकत चाहिए होती है, बड़ा दिमाग चाहिए होता है, बड़ा विजन चाहिए होता है, ताकि हम कुछ ना कुछ कोशिश करके अपने आप को मैनेज कर सकें। तो जनाब थैंक्स अलॉट वक्त पे इतनी विशेष टिप्पणी, इतने विचार मेरे सुनने के लिए। अगर आप भी देना चाहते हैं तो 1157100971 ये वो नंबर है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। व्हाट्सएप कीजिए या इस पे लाइव कॉल, व्हाट्सएप पे भी आप हमें कर सकते हैं। लें जी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, पर्सनैलिटी ऑफ द डे में रिवील करने लगा हूं जनाब आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है, बड़ी जबरदस्त सी, बहुत ही कमाल की। जैसा कि मैंने बताया कि साउथ एशिया से इनका ताल्लुक है, जनाब चाइना के एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी कमाल की पर्सनैलिटी जो इस वक्त ना अली बाबा को रन करें, क्या कमाल की जबरदस्त चीज इन्होंने बनाई। वट एवर जनाब, बड़े फेमस बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर, और उसके साथ साथ यूएनओ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कई बार अपनी स्पीच से, अपने प्रोडक्ट से, अपने नॉलेज से लोगों को जनाब गरमा चुके हैं, उनको मोटिवेट कर चुके हैं। जनाब मेरी मुराद है जैक मा। तो एंजॉय कीजिए जबरदस्त मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी ऑफ जैक मा के, कैसे जनाब ये कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में इतने बड़े बिलियनर बने, कामयाबी कैसे देखी, और अपने वक्त को ज़ाया ना करते हुए किन किन चीजों को इन्होंने छोड़ा, किन किन चीजों को अपनाया। स्टे ट्यून्ड फॉर द 97.1 FM, एंजॉय कीजिए जबरदस्त सेगमेंट। योर होस्ट विल बी राइट बैक आफ्टर द सेगमेंट व्हिच इज पर्सनालिटी ऑफ द डे, द ग्रेट जैक मा।
1: द को-फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप जैक मा टुडे इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन चाइना विद अ नेट वर्थ ऑफ $37.5 billion, बट ही स्टार्टेड हिज जर्नी वर्किंग फॉर $12 पर मंथ। So if you think you have it rough, just take a look at Jack Ma's success story. It will motivate you and inspire you to never give up, because you just can't beat the person who never gives up. Jack Ma was born in China and comes from a humble family. He always wanted to learn English, and as a kid, he spent his early mornings riding 70 miles on his bicycle for 9 years, giving English tours to foreigners for free. It was his way of practicing and learning English. In one of those tours, he met a foreign girl who gave him the nickname Jack because his Chinese name was hard to spell for her. Even from his early childhood, he faced hard times. He faced so many failures and rejections. Jack Ma failed in his primary school examinations 2 times. He failed 3 times during his middle school exams. He failed 2 times before he was accepted by what was considered the worst university in his city. He even applied to Harvard University 10 times and got rejected every single time. But that's not all. This was only during his education. Jack Ma was never a great student. He was always terrible at math, and actually he still is today. He failed in several subjects in school, but he possessed some kind of awareness that convinced him that being at the top of the class doesn't mean that you're intelligent or that you will ever be successful. He knew that there is more. Jack tried and failed to get a job after applying to them 30 times. When KFC came to China, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only guy who wasn't. He was also one of the 5 people who applied for a job in police force and was the only one getting rejected after being told, "No, you're no good." But when he was asked about his rejections, he said, "Well, I think we have to get used to it. We are not that good." After spending 3 years to get into a university, graduating with a bachelor's degree in English, he started working as an English teacher with a pay of only $12 per month. But he was never discouraged by any of this. The very important thing you should have is patience. And he did. In 1995, he had his first encounter with the internet when he went to US with his friends, and he was fascinated. He saw the lack of Chinese webs as an amazing business opportunity for him. So with no experience in coding or in computers, he founded an internet company for China. Unfortunately, his first 2 companies failed to succeed. But for the boy who failed his whole life, this was a starting point on his journey to success. So 4 years later, he gathered 17 of his friends in his apartment and convinced them to invest in his vision to create an online marketplace he called Alibaba. The main idea was that the site will allow exporters to post product listings that customers could buy directly. But the beginnings were really hard. In the beginning, I just wanted to survive. For the first 3 years, we made 0 revenue. But soon, the service started to attract members and investors from all over the world. And the company has raised $5 million from Goldman Sachs and $20 million from SoftBank. Since then, Alibaba has become the biggest online marketplace in China and generates more profit than Amazon and eBay combined, and has turned Jack Ma into one of the richest people in the world. So don't let your humble beginnings, your level of education, your lack of resources stop you from pursuing your dreams. Because your success is determined by the amount of effort you put in. And most important, by not giving up when failure hits you. And it will hit you. If you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure. Because if there is a man who knows the meaning of failure, it is Jack Ma. Before reaching his 30s, he felt like a failure all the time. He felt like a loser. But that didn't discourage him. On the contrary, he said, "I know this is a training course for me." He looked at every challenge in his life like an opportunity. Jack Ma never thought in his life that he will be a businessman. He never thought he would be a teacher. And most certainly, he never thought he would become one of the richest people in the world. But at some point in his life, he was all of those people. On the opposite, there were other things he wanted to do, like he wanted to be a policeman and he wanted to work at KFC, but ended being the only one who got rejected. And it looks like those rejections and failures were for his own good. So don't be afraid of your failures. Once in your life, try something, work hard at something, try to change. Nothing bad can happen. And remember, never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. So, what's your story?

वाओ वाओ वाओ जी। तो लिसनर्स वेलकम बैक। ये थी जनाब जबरदस्त इनक्रेडिबल सी स्टोरी द ग्रेट जैक मा की। और अब मुझे लगता है कि हर बंदा ना बड़ा जबरदस्त मोटिवेट, मैं तो इतना जबरदस्त मोटिवेट हो चुका हूँ कि बस आज के दिन ना वो कहते हैं ना तबाहियाँ फेर देनी है जनाब। एनीवे जोक्स अपार्ट जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर एक चीज़ नोट करता हूँ, एक चीज़ हर वीडियो में से या कोई भी ऑडियो जो मैसेज आप तक पहुँचता है या जो भी पैगाम हम पहुँचाना चाहते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी ऑफ टीम, बेसिकली क्या पैगाम होता है, बेसिकली शामिल यही पैगाम होता है कि हमने कभी भी फेलियर्स को अपनी ढाल नहीं बनाना, कभी भी नहीं सोचना कि हम नाकाम हो चुके हैं। नए नए टारगेट्स आते हैं, नए नए अचीवमेंट्स आपको मिलती हैं, आप उनको विन करते हैं। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं जैसी देखी जा रही होती हैं। कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, कैमरे की आंख भी धोखा खाती है। इंसान बेसिकली कर कुछ और रहा होता है, नज़र कुछ और आ रहा होता है, क्योंकि माइंडसेट बिजी रहता है। जनाब ऐसी कुछ स्टोरी थी हमारे जैक मा की, इनका भी माइंडसेट बिजी था, करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और रहा था, और कभी भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, और कभी ये भी नहीं सोचा था कि ईबे या अमेज़न के लेवल पर ये बंदा कम्पीट करेगा। एक ज़बरदस्त सा व्यक्ति जिसको अनपढ़ होने के साथ साथ इंग्लिश भी नहीं आती, और टूरिस्ट के साथ साथ यानी गाइडर के साथ अपना एक करियर शुरू किया, और उसके बाद अपने करियर को कहां तक पहुंचाया, किस जगह तक पहुंचाया, ये सारी चीज़ें इस ज़बरदस्ती सेगमेंट में यानी पर्सनैलिटी ऑफ द डे में आपने मुलाहिजा की। तो जनाब इसका रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, और इसका जो फाइनल फ्रेज है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखे देता हूँ कि आपके पास कामयाबी आती है। यानी अगर आज का दिन आपका बुरा है, कल का दिन मजीद बुरा होगा, परसों का दिन मजीद बुरा होगा, लेकिन उससे आगे आपको सनशाइन जरूर मिलेगी। तो जनाब उस सनशाइन के इंतजार में मेहनत जरूर कीजिए, वक्त को जाया मत कीजिए। अगर आप किसी एक जगह पे फिट नहीं हो रहे तो हो सकता है कि वो प्लेस, वो स्पेस आपके लिए ना हो। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो हो सकता है आपने कोई एम्प्लॉय गलती से हायर करके उस जगह पे बिठा दिया हो जिसमें उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। हो सकता है अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपने ऐसा कोई एम्प्लॉयर चुना है कि बेसिकली तो आपको नज़र आ रहा था कि ये कंपनी या ये सिचुएशन या ये जो जॉब है ये मेरे माइंडसेट के साथ चलती है, मेरी क्वालिफिकेशन के साथ चलती है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करूँगा और मैं अपने एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दूंगा। लेकिन जब आप पानी में उतरते हैं, जब आप गोता जन होते हैं ज़बरदस्ती गहराई में, तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, अरे नहीं सिचुएशन डिफरेंट है। तो फिर मूव ऑन कीजिए, क्योंकि ना आप अपना टाइम ज़ाया करें ना अगले का टाइम ज़ाया करें। और इस तरह जब आप अपने वक्त को अहमियत देना शुरू करते हैं तो फिर आपके पास कामयाबी हमेशा के लिए आती ही आती है। जनाब ये मेरी विशेष टिप्पणी है, मेरे राय हैं, कुछ और मैसेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्ती कोट मेरे साथ शेयर की जा चुकी है, और ये भी कहाँ से जनाब, 92 आई थिंक ये नंबर तो पाकिस्तान का है, मे बी यहाँ से आपके लोग होते हैं व्हाट्सएप जो है वो दूसरी कंट्री का यूज़ करते हैं, कोई इंडिया का, कोई हिंदुस्तान का, कोई पाकिस्तान का, कोई नेपाल का, बांग्लादेश का, जहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो जी वेलकम भी आपको, जहाँ पे भी हैं आप। जना बिल्कुल रोमन इंग्लिश में, रोमन उर्दू में लिखा गया, लेकिन मैं पढ़ूंगा ज़रूर। पढ़ते पढ़ते जना मैं आपको ये बताता हूँ। कहते हैं जी, बुरे वक्त से घबराए नहीं, हाँ बुरे वक्त से घबराए नहीं, क्योंकि ये अक्सर आपको कुछ अच्छे सबक सिखाने, कुछ अच्छे फैसले लेने और कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। जनाब थैंक यू वेरी मच, वक्त तो वक्त होता है, अगर बुरा है तो आप वक्त को बुरा नहीं कह सकते, आपका वक्त बुरा चल रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़माने को या मुआशरे को, सोसाइटी को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी का ये कलमिया है, वो अलमिया भी बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा फ़नी सा, आप इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। हम अक्सर ये बात करते हैं, बातों बातों में नहीं बात निकल जाती है, यार मुआशरा ही ऐसा है, यार निज़ाम ही ऐसा है। अरे निज़ाम में ढले हुए हम लोग हैं, हमारा माइंडसेट उस चीज़ को मैच नहीं कर पा रहा, हमारा माइंडसेट उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा जो मुआशरे में हो रहा है। आप उसको गलत कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके सामने 10 लोग ऐसे हों जो उसको सही कह रहे हों, जो उसको सपोर्ट कर रहे हों। तो फिर अपने आप को थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ आपको लेके जाना चाहिए,
जब आप अपनी सोसाइटी के एनालिसिस करते हैं, अपनी सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप एक अच्छे सिविलाइज्ड जो होते हैं ना लोग बनते हैं, यानी एक अच्छे शहरी बनते हैं, एक अच्छे नागरिक आप बनते हैं। और आपको हमेशा ये कोशिश रहती है, आपको इस चीज़ का अंदेशा रहता है, आपको इस चीज़ का आपके विचार मैच नहीं करते लोगों के विचारों के साथ, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग फील करना शुरू कर देते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि जब आप अलग थलग फील करते हैं तो आप लोगों से मिलना कम कर देते हैं। आप ये समझते हैं कि यार लोगों से मिलूंगा उलझूंगा ज़्यादा, ये होगा वो होगा, और फिर उसके बाद तो जहन जो है माइंड सेट है वो तो खदशात का घर है। अगर आपका माइंड में एक खदशा जन्म ले चुका है तो फिर यकीन करें कि उसने आगे बीसियों खदशों को जन्म देना है, उसने आगे बहुत ज़्यादा जो खदशात हैं उनको लेके साथ चलना है। और फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा खदशात भरते जाते हैं माइंड सेट में और माइंड फिर चेंज होता जाता है, माइंड फिर समझने की जो सलाहियत है उसको खोना शुरू कर देता है, फिर आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएशन है, जो आपकी जो मेन आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की, किसी चीज़ को समझने की, वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है। फिर अक्सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर आपको कहता है कि आपकी रेजिस्टेंस पावर यानी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म हो रही है, आप ऐसे इकदाम करें, आप ऐसे कदम लें, आप ऐसा कुछ करें। और फिर मुख्तलिफ एक्सरसाइज बताई जाती हैं, कुछ मेडिकेशन भी होती है, ये सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं कि आप स्टार्ट में अपनी समझ को कहाँ तक लेके जाते हैं, आप किस तरह अपनी समझ को अपनी अंडरस्टैंडिंग को इवेलुएट करते हैं, क्या आपकी सोच, क्या आपके विचार वक्त के साथ बह रहे हैं, क्या आपके विचार टाइम के साथ मूव कर रहे हैं, यानी इसलिए अपने आप अपने विचारों को मॉडरेट करना, थोड़ा सा ग्रो अप करना माइंडसेट के लिए बेहद ज़रूरी है।

0: तो बिल्कुल जनाब, वक्त के साथ साथ वक्त जाया मत कीजिए, वक्त की इम्पोर्टेंस हमेशा आपके पास रहेगी। इसके अलावा जो माइंडसेट है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। अपने मॉडर्न एरा के हिसाब से अपने आप को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको स्टडी करनी पड़ती है। जो अक्सर मैं बात कर रहा था ना कि शुरू में जो हम वक्त ज़ाया करते हैं, वक्त ज़ाया कैसे करते हैं कि हम मोबाइल हाथ में लेके स्क्रॉल करते हैं, तो उस वक्त फिर आप स्टडी करें। कुछ लोग हैं, आई नो वेरी वेल सम पर्सनैलिटीज, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं हमारे इस एरिया में, नॉटिंघम में स्पेशली, जो स्पेशली सर्च करते हैं, रिसर्च में हमेशा रहते हैं, गूगल को देखेंगे या एक नई चीज़ों को देखेंगे, मोटिवेट रहेंगे और अपने आप को आगे लेके जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ मिलते जुलते रहिए। मैंने तो एक दो बंदे देख लिए जनाब, ताड़ में रखे हैं, आप लोग भी रखिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक विद फजा 97.1 FM, योर होस्ट इज राइट हियर। लेकिन अभी हमारे दरमियान हायल होने जा रही कमर्शियल ब्रेक, खूबसूरत सी कमर्शियल ब्रेक के उस पर दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। जनाब सेगमेंट होगा फजा आइडिया का, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सी 5, 7, 8, 10 ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इसलिए स्टे ट्यून, एंजॉय कीजिए गुड मॉर्निंग नॉटिंघम, एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
0: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
0: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान आसिफ खान आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम स्वागतम है जनाब ये उन समाधों का जिन्होंने उन साहिबान को उन हजरात का जिन्होंने मुझे ट्यून के 97.1 एफएम पे नॉटिंघम शायर के जितने भी खूबसूरत सी समात हैं जितने भी लोग हैं बड़ी प्यारे से खूबसूरत से सिविलाइज लोग हमारे पास रहते हैं हम उनके पास रहते हैं और उसके बाद अच्छे लिसनर्स ऊपर वाले ने हमें अता किए हैं ताकि हमारे पास फीडबैक भी आता रहे। तो फीडबैक के लिए आप क्या करेंगे 0115710971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझसे रब्ता करेंगे। जनाब एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराए देता हूँ आज का जो टॉपिक है वो है जी वक्त टाइम, इसमें हम बात करें और ये जो हमारा सेगमेंट है बेसिकली है तो ये एंटरटेनमेंट का सेगमेंट क्योंकि लास्ट सेगमेंट में मैं आपको जानते हैं कि बातें बहुत कम करता हूँ अपने जितने भी मेरे विचार हैं जितनी भी विशेष टिप्पणियाँ हूँ मैं अपने पहले दो या तीन सेगमेंट्स में दे चुका हूँ लेकिन अगर आप फिर भी कोशिश करना चाहते हैं डेफिनेटली करें तो जनाब थैंक्स अ लॉट। कोशिश करना चाहते हैं ये नहीं कि मैं आपको कुछ चुनौती दे रहा हूँ मैं आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा जनाब गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप इजी हैं तो हम बात कर सकते हैं अगर आप बिजी हैं तो फिर सुनिए ज़बरदस्त सा हैक। हैक क्या है कि जनाब दुनिया में कौन से ऐसे पाँच वेज हैं जिससे आप जो अपनी डिस्ट्रैक्शन है जो काम के दौरान आपको डिस्ट्रैक्शन होती है या आपका आप कोई बहुत ज़्यादा इनहमाक के साथ कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन होती है या कोई चीज़ होती है तो पांच वेज ऐसे क्या हैं फाइव वेज टू स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो जनाब ये आइडिया का सेगमेंट है आपके लिए खूबसूरत सेगमेंट को एंजॉय कीजिए। इस सेगमेंट को उस पार कुछ हल्की फुल्की सी गपशप करेंगे फिर जनाब मैं ट्रैक्स लगा के आपके लिए आपको गुड बाय कह दूंगा जनाब ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून के 97.1 एफएम पे एक हल्का सा मैसेज आया डेफिनेटली ट्यून अप किया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्टे ट्यून एंजॉय कीजिए जबरदस्त सा हैक और मिलते हैं इस हैक के उस पार सेगमेंट है फजा आइडिया।
1: Do you ever find yourself trying to concentrate and yet can't seem to focus? Why are we so distracted these days? And is technology the root cause of the problem? Or is there something deeper going on? My name is Nir Eyal, and I have spent the last 5 years researching and writing about the deeper psychology of distraction. When I found myself struggling with distraction, I decided to do what many people advise and got rid of the distracting technology. I got myself a flip phone without any apps. All it did was phone calls and text messages. Then I got a word processor from the 1990s without any sort of internet connection. Unfortunately, I found I still got distracted. I'd start reading a book from my bookshelf. I'd tidy up my desk. I'd take out the trash even, just to avoid the thing that I didn't want to do. I had only focused on the external triggers, the pings and dings that were leading me towards distraction. What I hadn't focused on, and what turns out to be a much more common source of distraction, are the internal triggers, the uncomfortable emotional states that we seek to escape. When we're lonely, we check Facebook. When we're uncertain, we Google. When we're bored, we check the news, stock prices, sports scores, anything to not feel these uncomfortable sensations that we're not ready to experience. Here are a few techniques I discovered in my research that can help us stay on track. First, what you want to do is to make sure you plan your day. 2/3 of people don't keep any sort of calendar, any kind of schedule in their day. Well, the fact of the matter is if you don't plan your day, somebody is going to plan it for you. Many of us believe in this myth of the to-do list. I used to think that just by writing things down, they'd get done. But of course, I go from day to day to day recycling the bottom half of my to-do list because I wasn't making time to do those tasks. So the best place to start is not with the output of what you want to get done every day, but with the input of how much time you have to devote to every task. So distraction has many consequences. One of them is that we find that when someone is interrupted during a task, it can take up to 20 minutes for them to refocus on what they were doing. Many times we don't even realize how much worse our output is when... So check email in one solid block. If you enjoy using social media, that's great, but make time for it in your day so it's not something you're only using every time you feel bored or lonely. Researchers have found that surfing the urge is an effective way to master our internal triggers. In a smoking cessation study, researchers found that when they talk

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फजाना 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर मैं आपके साथ आपका मेजबान कुछ ट्रैक्स आपके सामने दोबारा रखे गए कोश गुजार किए गए बेसिकली आपकी समाधों की नज़र किए गए ताकि कुछ साहिबान कुछ हजरात कुछ व्यक्ति और कुछ पुरुष इन चीज़ों को इंजॉय कर सकें। हमारे नॉर्गम शहर के जितनी भी पर्सनैलिटीज इस वक्त हमें सुन रही हैं आपका बेहद शुक्रिया। तो जनाब ज़बरदस्त सा हैक था फ़ज़ा आइडिया का कि 5 चीज़ें कैसी हैं कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकती हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी को आपने अवॉइड करना है, उसके बाद अच्छे से प्लांट्स अपने इर्द गिर्द रखिए जो आपको फ्रेश ऑक्सीजन अनायत करें, और उसके बाद आप उनसे भी आप कुछ एनर्जी ले सकें। उसके बाद पॉजिटिव लोगों से मिलिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो एक दूसरे को स्माइल देके गुजरते हैं, जैसा कि मैंने अक्सर आपको बताया सुबह का भी वक्त था, वो भी मैंने आपको बताया कि कितने खूबसूरत अंदाज में वो जो बुजुर्ग हैं वो जो अंकल हैं वो मुझे स्माइल करते हैं बड़े प्यारे अंदाज में। आज 2 वीक्स के मुसलसल काविशों के बाद आज हम दोनों ने एक ही वक्त पे सेम टू सेम स्माइल पास किए। तो ये जो कनेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा आपको स्वस्थ करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं ज़िंदगी में मज़ीद आगे बढ़ने के लिए। और उसके साथ ट्रैश अपने आगे पीछे बिल्कुल भी ना रखिए, अगर आपकी डस्टबिन ऑफिस की भर चुकी है तो उसको खाली कीजिए। और उसके बाद सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने डे को प्लान कीजिए। डे को प्लान करने के साथ साथ आप अपना वक्त ज़ाया होने से भी बचा सकते हैं। तो जहाँ वक्त का आज का हमारा टॉपिक था ये विशेष टिप्पणी थी, लेकिन अब कुछ ट्रैक्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके सामने रखे देता हूं, आप एंजॉय करेंगे इन ट्रैक्स को। ट्रैक्स के उस पार मैं आपके साथ नहीं रहूंगा क्योंकि हाइल होगी खूबसूरत सी कमर्शियल ब्रेक। बिल्कुल जनाब, धीरे से मत आए, तेजी से आए जिंदगी में क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं आपका। और जो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी होने का नाटक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा किसी चीज में खोए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि जनाब ये ड्रामे मत कीजिए। जिनको मैं कहना चाहता हूँ वो समझ गए, हाई रेटेड गबरू जितने भी हैं ना वो सारे मर गए हैं क्योंकि इतने सख्त कवानीन आ रहे हैं, गए होम ऑफिस के कंप्लायंस पूरे करने हैं आपने। एनीवे नाउ जोक्स अपार्ट, नॉटिंघम के जितने भी वासी हैं उन सब के लिए बेहद खूबसूरत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन के साथ गुजारेगा क्योंकि रहना है आपने ट्यून अप विद फजा 97.1 FM। स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक विद फजा 97.1 FM एंड एप। राइट नाउ यू हैव टू से गुड बाय, अपने मेजबान आसर खान को दीजिए इजाजत। कल जनाब नई एनर्जी के साथ, नई फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एनर्जी के साथ, नए सब्जेक्ट, नए सवालात, नए टॉपिक के साथ रहेगी आपसे फिर से मुलाकात ठीक 8 से 10 इन द मॉर्निंग इन वन एंड ओनली शो विच इज गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। हियर यू गो, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय नॉटिंघम।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों?

The radio station for people who love music. 107.1 FM.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। जी तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग, जो क्यों नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। जैसे कि लिसनर्स, आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ आपकी बातें सुनी जाती हैं और कुछ मैं आपको अपनी बातें सुनाती हूं। सो कुछ इसी तरह से हम हर दिन का स्टार्ट करते हैं और पूरी कोशिश यही करते हैं कि आपको हम अपने साथ साथ मोटिवेटेड रखें, आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो कि आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ पॉजिटिविटी को लेकर आए, बल्कि समटाइम्स होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है, इंसान को लगने लगता है कि ज़िंदगी अब उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं चल रही। सो इस तरह की सिचुएशंस में अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी मोटिवेशन देता है तो इंसान को बहुत अच्छा लगता है। सो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए बने इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेटिव सोर्स, यानी कि अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सो द लिसनर्स, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 01157100971 है मेरा और आपका रابطے का नंबर। ये ना सिर्फ एक नंबर है बल्कि ये एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी पाथ क्रिएट करता है जो कि आपको हमसे और हमें आपसे जोड़ता है। सो इस नंबर के जरिए से आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने सोच विचार, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। सो आज के दिन के हवाले से भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि आज के दिन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, और अगर कोई चीज़ आपको थोड़ी सी भी डिस्टर्ब कर रही है तो बिना झिझक आप हमसे कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभार इंसान का दिल करता है कि कोई इंसान को सुने, उसे समझे और फिर उसके मुताबिक उसे जवाब दे। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की कमी है कि जो आपको समझें, आपका एहसास करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग कहने को तो हमारे अपने होते हैं लेकिन वो हमें उस तरह से नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो हमें समझे। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ज़ैनब फातिमा यहाँ मौजूद है। सो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बातें और मैं आपको ऑनेस्टली बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दूंगी। वैसे मैं अपने सभी दोस्तों को भी यही कहती हूँ। अच्छा, आप सबको मैं एक बात बताती हूँ, मेरे सभी जितने भी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं वो सब मुझे यही कहते हैं कि जब कभी भी किसी की लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही होती है जहाँ उसको कोई भी सलूशन नहीं मिल रहा होता तो मैं उसे बहुत अच्छी एडवाइस देती हूँ, लेकिन जब बारी आती है मेरी अपनी ज़िंदगी की तो मैं उन एडवाइजेस पर खुद अमल नहीं करती। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, लेकिन कभी कभार मुझे खुद भी लगता है कि मैं जो चीज़ें दूसरों के लिए सोचती हूँ वैसे ही चीज़ें मैं अपने लिए क्यों नहीं सोचती। तो हेयर लिसनर्स, ये तो एक अलग डिबेट है, इस पर हम नहीं जाते क्योंकि अभी हमने बढ़ना है हमारे आज के टॉपिक की जानेब, क्योंकि डीवा डायलॉग में हम हर दिन कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक नया इन्फॉर्मेटिव सा, मोटिवेटेड सा टॉपिक लेकर आएँ। सो फिर उस पर हम गपशप करें, कुछ आपकी कीमती राय शामिल करें, साथ ही साथ कुछ आपसे शेयर करें उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी सोच विचार। सो कल जैसे कि हमारा टॉपिक था कलर एंड देयर हिडन साइकोलॉजी, सो हमने कल बहुत सारे कलर्स को डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हर कलर अपने साथ किस चीज़ को लेकर आता है और किस तरह से मुख्तलिफ रंग हमारे मूड को, हमारे डिसीजन पावर्स को और साथ ही साथ हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की रेड कलर की, फिर ब्लू, येलो, साथ ही साथ ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ब्लैक एंड क्लासिक वाइट। सो वेल लिसनर्स, मैंने पूरी कोशिश की थी कि कल मैं उन सभी कलर्स को कवर करूं जो कि हमारे डेली बेस में हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और साथ ही साथ आपसे शेयर करूं कि वो कलर हमारी ज़िंदगी को किस तरह से और साथ ही साथ ये भी कि वो कलर हमारी अपनी ज़िंदगी को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे थे। सो लिसनर्स, कल आपका भी फीडबैक मुझे मौसूल हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से मैं डिफरेंट चीज़ों को लेकर डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखती हूँ, आप सब ने भी अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव मुझसे शेयर किया। सो इसी तरह से हमसे शेयर करते रहा करें अपना पर्सपेक्टिव, क्योंकि इससे ये होता है कि जब बहुत सारे लोगों की सोच एक साथ कंबाइन हो जाती है तो कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद दिखने को मिलता है। सो वेल लिसनर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगेन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर मैं और आप हम सभी बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारी निजी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक रखता है। और जैसा कि आजकल हम जिस इरा में चल रहे हैं, इट्स 2026, तो आजकल के दौर में बहुत सारे लोगों की ये एक बुनियादी ज़रूरत भी बन चुका है और हमारे डेली यूज़ का हिस्सा है। सो आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया एंड कनेक्शंस। क्या सोशल मीडिया हमारी अमली ज़िंदगी में हमारे कनेक्शंस को बहाल करता है, या फिर ऐसा है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने अपनों से प्यारों से दूर होते चले जा रहे हैं। सो डियर लिसनर्स, ये है हमारा आज का मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा टॉपिक और इस पर हम बहुत सारी डिबेट करेंगे, बहुत सारी गपशप करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के, बेसिकली सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया बेसिकली आजकल हर घर में हर इंसान के पास मौजूद है, क्योंकि आजकल के दौर में सोशल मीडिया हर एक इंसान की ज़रूरत बन चुका है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें या थोड़ा सा वक्त को पीछे लेकर जाएँ, हम बात करते हैं 2016 की। ये वो साल था जिस साल से आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा रिवॉल्यूशन लिया और फिर इंटरनेट की दुनिया ने कदम रखा। सबसे पहले जहाँ 2016 की अगर हम बात करते हैं, तो उस दौर में अगर हम सोशल मीडिया का नाम लेते हैं तो लोग सोशल मीडिया के नाम से इस कदर फैमिलियर नहीं थे, और ना ही सोशल मीडिया का हमारी अमली ज़िंदगी में इस कदर इन्फ्लुएंस था कि हमें ऐसा लगे कि क्या सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बेसिकली सोशल मीडिया ना 2016 से स्टार्ट हुआ, और अगर हम स्टार्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, गूगल और साथ ही साथ ट्विटर, ये तीन बेसिक प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए गए, जो कि सभी लोगों के लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था, क्योंकि इससे पहले ना तो लोग सोशल मीडिया के नाम से फैमिलियर थे और सेल फ़ोन के नाम पर लोगों का माइंडसेट बस यही कहता था कि मोबाइल फ़ोन का मतलब है या तो आप किसी को मैसेज करें या फिर आप किसी को कॉल करें। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया ने इस दुनिया में कदम रखा, तो सन 2016 में पहली मर्तबा लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब वाकई हम फ़ोन को ना सिर्फ कॉल के लिए, मैसेजेस के लिए, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम अर्ली 2016 की बात करते हैं, तो जैसे ही फेसबुक मार्केट में इन हुआ, तो देखते ही देखते फेसबुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था, क्योंकि लोगों को कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरद फेसबुक के थ्रू मिला। क्योंकि फेसबुक ना सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से गपशप कर सकते हैं, बल्कि आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप दुनिया को खुद से आगाह कर सकते हैं, यानी कि आप फेसबुक के थ्रू लोगों को ये बता सकते हैं कि अच्छा आपने किस तरह से दिन का स्टार्ट किया, किस तरह से दिन का एंड कर रहे हैं। आप अपनी निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक पोस्ट कर सकते हैं, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और हर किसी को या जिसको आप चाहते हैं आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से ऐसा लगने लगा लोगों को कि हम अपनी मालूमात दूसरों तक बआसानी पहुंचा सकते हैं और दूर बैठे मीलों दूर लोगों को भी बआसानी फेसबुक के थ्रू देख सकते हैं। उस दौर में इस तरह से सोशल मीडिया ने आपकी, मेरी, हम सभी की ज़िंदगी में कदम रखा। इस दौर में जब नया नया गूगल आया था, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे ऐसा लगता था कि वाओ, गूगल ना सिर्फ एक एप्लीकेशन है बल्कि एक मालूमात का ज़खीरा है। जो पुराने दौर के लोग हैं जो हर वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए डिक्शनरी चेक किया करते थे, जब उन्होंने पहली मर्तबा गूगल को देखा, तो देवर लाइक कि ओ माई गॉड, कितनी अमेजिंग है गूगल एप्लीकेशन, क्योंकि ना सिर्फ इससे हम मालूमात हासिल कर सकते हैं बल्कि दुनिया जहाँ की, जहाँ कहीं की भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब हम गूगल के थ्रू हासिल कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से ट्विटर। लेकिन अब अगर हम आज की बात करते हैं, जैसा कि आज है 2026, तो आजकल अब सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ बन चुका है जिसके बिना लोगों का बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। यानी कि 2016 में जब इंटरनेट या सोशल मीडिया ने दुनिया में कदम रखा था, तो तब लोग इसको इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन ऐसा किसी को भी नहीं लगता था कि फेसबुक या फिर ट्विटर, इन सब के बिना ज़िंदगी रुक जाएगी। लेकिन
اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک دن کے لیے بھی ان کا وائی فائی یا پھر کوئی اپلیکیشن ہو جاتی ہے بند تو ان کی زندگی بہت بری طرح سے متاثر ہوگی۔

देखिए तो लिसनर्स, ये है द पावर ऑफ सोशल मीडिया। सो ये तो हो गया हमारा सोशल मीडिया का एक सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। वेल, अब हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बातचीत करते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया हमारी अमली ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है, क्या सोशल मीडिया हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर सोशल मीडिया के एडवांटेजेस कम हैं और डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सो ये तो एक बहुत लंबी डिबेट है जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो आगे बैठते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आप सभी से बस इतनी सी दरख्वास्त है कि आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। आई नो लिसनर्स, अभी मेरे पास बहुत सारी म्यूजिकल रिकमेंडेशंस भी मौजूद हैं जो कि आप सभी ने ही भेजी हैं। सो कमर्शियल ब्रेक के उस पर मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी कुछ ऐसे पसंदीदा ट्रैक्स जो कि आप ने ही मुझे रिकमेंड किए हैं और आप सुनना चाहते हैं। सो उसके लिए स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
5: Because when we work together, it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
10: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out

सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी लिसनर्स को खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो फजा 97.1 FM। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा। सो द लिसनर्स, ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन एक बार फिर से उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें हो सकता है ज्वाइन किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पहले किसी काम में या फिर किसी टास्क में फंस चुके हों। सो अगर आपका भी शुमार है उन सभी लोगों में से जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, तो जल्दी से हमें बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हुए हमें ट्यून कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं। तो ये लिसनर्स, जैसा कि मैंने आप सबसे किया था वादा कि कमर्शियल ब्रेक के उस पर मैं आपकी रिकमेंडेशंस को प्रोग्राम में शामिल करूंगी, तो सबसे पहले आप सभी की भरपूर फरमाइश पर प्ले करती हूँ एक ऐसा ट्रैक जो कि मेरी एक लिसनर को बेहद पसंद है। सो हमेशा वो हमें रिकमेंड करती हैं कि आप ये गाना प्रोग्राम में शामिल किया करें, तो उनकी भरपूर फरमाइश पर आज भी हम ये गाना प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो जी आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, लेकिन ट्रैक है थोड़ा सा इमोशनल, तो आपने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना, आपने सुनना है इसे बहुत प्यार से। और ट्रैक के उस पर गपशप का सिलसिला जारी करेंगे क्योंकि हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, अगर आप इसको गौर से सुने तो। लेकिन फिलहाल के लिए सुनते हैं ये ट्रैक, ट्रैक के उस पर होती है आपसे मुलाकात।

0: सी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? वेल, ये ट्रैक हमें रिकमेंड किया था हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर ने। सो जी, आपकी भरपूर फरमाइश पर हमने इस गाने को प्रोग्राम में शामिल किया इस उम्मीद के साथ कि आपको ये ट्रैक बहुत अच्छा लगेगा। सो बाकी लिसनर्स, आप ही बता सकते हैं अपनी इसी तरह से फरमाइशें और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम आपके पसंदीदा ट्रैक्स को रेडियो फजा 97.1 और टीवा डायलॉग में शामिल करें। सो जी लिसनर्स, वापस से कंटिन्यू करते हैं अपने उसी टॉपिक को जो कि हमने कमर्शियल ब्रेक से पहले स्टार्ट किया था। सो आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया एंड कनेक्शंस। सो बेसिकली आज हमने ये देखना है कि क्या सोशल मीडिया, जो कि आज 2026 में हर एक इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है, तो क्या ये सोशल मीडिया इंसान को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंसान के मूड को, उसके डिसीजंस को, और साथ ही साथ कि क्या सोशल मीडिया इंसान की लिए एडवांटेजेस लेकर आता है या फिर डिसएडवांटेजेस लेके आता है, और क्या आपको भी लगता है कि थ्रू सोशल मीडिया आप दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो खुद को, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज़्यादा फैला रहा है, और आपको ऐसा लगता है या आप इस बात से एग्री करते हैं कि सोशल मीडिया से आप दूसरों से मोर कनेक्टेड रहते हैं इंस्टेड ऑफ दूर होने के। सो जी लिसनर्स, अगर मैं आपसे अपना पर्सनल एक ओपिनियन या फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो फॉर मी आई फील लाइक कि इन 2016 सोशल मीडिया इज़ लाइक समथिंग जो कि आपको दूसरों से जोड़ के रखता था या फिर आपको अपने उन प्यारों से बात करने का मौका फराहम करता था जो कि आपसे बहुत दूर रहते हैं, चाहे आप यूके में रहते हो या फिर आप रहते हो जर्मनी में। लेकिन थ्रू सोशल मीडिया आप एक दूसरे से रابطہ कर सकते हैं, मीलों दूर आप एक दूसरे तक अपने पैगामात पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी की कोई फैमिली गेट टुगेदर है तो आप उसकी एक अदद पिक्चर क्लिक करके सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी बहुत ही खूबसूरत जगह पर गए हैं और आप चाहते हैं कि आपके चाहने वाले या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स भी काश आपके साथ उस जगह पर मौजूद होते, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनको वहाँ से क्लिप्स बनाकर भेज सकते हैं। लेकिन अगर मैं जितना देखूं, जितना मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आई नो हो सकता है कि आप सबका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस की निस्बत अलग हो, या फिर आपने वो तमाम तर चीज़ें नहीं फेस की हों जो मैंने की हों। सो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज 2026 पे जहाँ सोशल मीडिया हमें बहुत सारे एडवांटेजेस दे रहा है, सोशल मीडिया के हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़वाद हैं, सोशल मीडिया की वजह से हम चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, हमें हर चीज़ में हेल्प मिल रहा है, वहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि सोशल मीडिया की वजह से इंतशार फैला रही हैं। सो बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस हैं हम वो आपसे शेयर करते हैं, और फिर हम बात करेंगे सोशल मीडिया के एडवांटेजेस के ऊपर। सो बेसिकली सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है सोशल मीडिया कंपैरिजन। सो बेसिकली आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे ही सोशल मीडिया हर एक इंसान की दस्तरस्त में है तो लोग ये करते हैं कि सोशल मीडिया पर आप सबसे ज़्यादा क्या ही यूज़ करते होगे, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, टिकटॉक या फिर व्हाट्सएप। सो मेजॉरिटी हमारी आवाम टिकटॉक और इंस्टाग्राम यूज़ करती है। सो अगर आप ही इंस्टाग्राम फैमिली में से ताल्लुक़ रखते हैं सो आप मेरी साइट पर आ जाएं, क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो मैं बात ये कर रही हूँ कि आजकल जैसे कि हम टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को या फिर ऐसे लोगों को डेली बेसिस पर काफ़ी मरतबा देखते हैं जो कि या तो सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं या फिर बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते होते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा, बहुत वैल्यूएबल और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो बेसिकली लोग क्या करते हैं, जहां सोशल मीडिया को वो देखते हैं, एडमायर करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं इसी सब के बीच में कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। सो हम अपनी ज़िंदगी को उन तमाम तर लोगों की ज़िंदगी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, हम ये देखते हैं कि अच्छा फ़लाँ ने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ अचीव कर ली है, फ़लाँ के पास ये चीज़ है, फ़लाँ ने नई गाड़ी ले ली है, तो फ़लाँ के पास तो बहुत ही प्यारा घर है। सो इस तरह की जब हम डेली बेस पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, और अगेन हम फिर अपने घर की जानिब देखते हैं, अपनी गाड़ी की तरफ देखते हैं, या फिर उन तमाम तर चीज़ों की तरफ देखते हैं जो आपको सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं लेकिन आपकी अमली ज़िंदगी में नहीं होती। सो यहीं से वो कॉम्प्लेक्स जन्म लेता है जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है, साथ ही साथ आपको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। सो जब आप ये देखते हैं कि दूसरों के पास वो तमाम तर चीज़ें हैं, आपके पास नहीं हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है और आपकी ज़िंदगी उनकी तरह अच्छी नहीं। आपको यूँ भी महसूस होता है कि सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी प्राइवेट लाइफ दिखा रहे होते हैं, लग्जरी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। सो सोशल मीडिया बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो है लेकिन साथ ही साथ बहुत फेक प्लेटफॉर्म भी है। सो बेसिकली सोशल मीडिया पे जो लोग अपनी चीज़ें दिखा रहे होते हैं वो टोटली फेक होती हैं, जैसे कि आजकल सो कॉल्ड जिनको हम फैमिली व्लॉगर्स कह सकते हैं, वो अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपनी ईच एंड एवरीथिंग को रिकॉर्ड करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वाओ उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कितनी कूल लाइफ जी रहे हैं। डेली बेस पर वो लोग घूमते रहते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स करते हैं। हम लोग इस तरह से फ्रीक्वेंटली नहीं घूमते, हम इस तरह से शॉपिंग नहीं करते या फिर हम उस तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे। तो इससे आपको कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आप कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने से आपको लगने लगता है कि अच्छा वो लोग तो मेहनत नहीं कर रहे लेकिन स्टिल दे अचीव एवरीथिंग, बट आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सके। सो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो सोशल मीडिया का एक तरफ ये है। अब सेकंड डिसएडवांटेज की हम बात कर लेते हैं, तो सेकंड डिसएडवांटेज जो कि सोशल मीडिया का मुझे लगता है, आई फील लाइक कि सोशल मीडिया की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में या फिर हर एक इंसान ने अपनी ही एक ज़िंदगी बना ली है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, अपना एक सोशल सर्कल है डेली बेसिस पर, फैमिली गैदरिंग्स और गेट टुगेदर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है सोशल मीडिया की वजह से, हमने, मैंने, आपने और हम सभी इंसानों ने। तो हम क्या करते हैं आजकल, जैसे कि 2026 है और सोशल मीडिया इस कदर हाइप पे है कि हम लोग फैमिली गेट टुगेदर्स में भी बैठे हों या फिर हम अपने चाहने वाले लव्ड वंस के बहुत करीब हों, बट स्टिल हम कॉन्टीन्यूसली अपना फ़ोन रीचेक कर रहे होंगे, हम दूसरों की स्नैप्स ओपन कर रहे होंगे या फिर सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल कर रहे होंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से हमारे पास अपने चाहने वाले, अपने प्यारों के लिए वक्त बहुत कम बच जाता है और आपस में जो एक उनसियत होती है और एक फैमिली गेट टुगेदर का एक सीन होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और आई फील लाइक ये भी सोशल मीडिया ही की वजह से हुआ है। अब जरा बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के तीसरे बड़े डिसएडवांटेज की, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड डिसएडवांटेज तो आपके, मेरे, हम सभी के सामने है लेकिन अब तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इंतशार फैला रहा है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस तरह की चीज़ें देखते हैं या फिर हमारी आंखों के सामने जो चीज़ें रोटेट करती हैं वो काफ़ी हद तक हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और मेंटल ग्रोथ में काफ़ी हद तक असरअंदाज होती हैं। सो सोशल मीडिया इंतशार किस तरह से फैला रहा है कि आपको डेली बेसिस पर काफ़ी सारी क्राइम सीरीज़ देखने को मिलती हैं, हॉरर सीरीज़ देखने को मिलती हैं और भी इस तरह की बहुत सारी सीरीज़ हैं जो कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू इजीली मिल जाती हैं, आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वो ना सिर्फ आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं बल्कि फिज़िकली भी डिस्टर्ब करती हैं। सो ये तो थे सोशल मीडिया के तीन बड़े डिसएडवांटेज जो मेरी नज़र में काफ़ी बड़े डिसएडवांटेज हैं जो कि सोशल मीडिया आजकल की ज़िंदगी में हम सबकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है। सो वेल लिसनर्स, अब जरा बात करते हैं हम एडवांटेजेस की। सो एडवांटेजेस में सबसे पहले आ जाते हैं कि अगर ये सोशल मीडिया के कुछ नुकसानात हमारी ज़िंदगी में हैं तो क्या इनके फ़ायदे क्या हैं। वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही मुझे एक बात याद आ गई, वो भी आपसे शेयर करती हूँ लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही प्यारी सी सॉन्ग रिकमेंडेशन मौसूल हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम एक प्यारा सा ट्रैक सुन लेते हैं और फिर गपशप का सिलसिला दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। सो ट्रैक थोड़ा सा इमोशनल है लेकिन कोई बात नहीं, सुन लेते हैं क्योंकि हर तरह के ट्रैक्स जो आपको पसंद होते हैं वही हमारा तो काम है प्रोग्राम में शामिल करना। सो सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और फिर हमारा ये जो बहुत ज़बरदस्त सा टॉपिक चल रहा है सोशल मीडिया एंड कनेक्शंस, इसके ऊपर मज़ीद तबसरा करेंगे।
1: Sarigama Karma, the perfect gift.

तो लिसनर्स, अब हम बात कर लेते हैं जरा से एडवांटेजेस के बारे में, क्योंकि पहले हमने बात की थी डिसएडवांटेजेस की, अब हम बात करते हैं कि अच्छा आजकल के दौर में सोशल मीडिया किस तरह से हमें अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में हेल्प आउट कर रहा है। सो सबसे पहले जो आई फील लाइक कि सोशल मीडिया की जो बेस्ट थिंग है बीइंग अ स्टूडेंट जो मुझे लगती है, जैसे कि अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आई फील लाइक कि जब हम अपने बचपन में हुआ करते थे तो हमारे पास तालीम के लिए उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा नॉलेज ग्रैब करने के सोर्सेज बहुत कम होते थे। हमारा मेन सोर्स ऑफ नॉलेज होता था बुक्स, और बुक्स भी बहुत एक्सपेंसिव होती थी, सो मोस्टली लोग बहुत कम ही बुक्स परचेज करते हैं। लेकिन आजकल के जो दौर की, जैसा कि आज 2026 है, तो अगर हम बात करें आजकल के स्टूडेंट्स की, सो सोशल मीडिया के आने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, यानी कि अब वो सोशल मीडिया की वजह से अपनी पढ़ाई को इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि अब आपको डिफरेंट तरह की बुक्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको बहुत सारा मटेरियल हासिल करना पड़ता है। आपको सिंपली जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही होती है, आप AI की मदद ले सकते हैं, आप Google की मदद ले सकते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी लर्निंग एप्स मौजूद हैं जहां जिनकी वजह से आप अपनी पढ़ाई को बहुत आसान कर सकते हैं। अब तो इतने ज़्यादा AI टूल्स आ चुके हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, आप स्लाइड्स बना सकते हैं, कैनवा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट सोशल मीडिया जो कि मुझे लगती है। अब जरा दूसरी सोशल मीडिया की अच्छी बात की जानी पड़ती हैं कि दूसरे तौर पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि सोशल मीडिया की वजह से हम सबकी लाइफ में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक कथित कमर्शियल ब्रेक का। सो लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानेब, और कमर्शियल ब्रेक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ द सोशल मीडिया। So stay tuned to the Faza 97.1 FM and we will be right back after a very short break.

आर बैक, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो यानी कि आपका अपना कम्फर्ट प्लेस दीवान डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। जी द लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप 01157100971 इस नंबर के थ्रू अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर कुछ भी जो आप करना चाहते हैं हमसे शेयर। सो अभी भी हमारे पास एक बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश मौसूल हो चुकी है। सो जल्दी से प्ले करती हूँ आप सभी के लिए आपका प्यारा सा ट्रैक और आप और मैं मिलकर सुनते हैं इस ट्रैक को। सो जैसे ही ये ट्रैक ख़त्म होगा तो वैसे ही हम दोबारा से अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू कर देंगे जो कि है सोशल मीडिया एंड कनेक्शंस। क्या सोशल मीडिया की वजह से हम अपने चाहने वाले प्यारों के साथ कनेक्टेड हैं या फिर हम हैं एक दूसरे से हो चुके बहुत दूर। सो इस पर तफसील से तबसरा करेंगे लेकिन इस खूबसूरत से ट्रैक के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट।

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

गाइस आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी. वो मिस्टेक ये हो गई थी कि मैं बोली जा रहा था और मुझे ये नहीं पता था माइक थोड़ा सा मुझसे दूर था और आवाज जो थी वो आप तक पहुंच नहीं रही थी.

यार कैसा लग गया गाइस। ओ यार पता कि मैं जनाब थोड़ा जहा ना छेड़ रहा सा म्यूजिक दे वॉल्यूम नू, मैं उत्ते थले कर रहा सा, मैं देखना चाह रहा सा कि किनू मेरी आवाज़ आ रही है किनू नहीं आ रही। खैर एट द एंड मैनू फिर लोगों ने कमेंट करना शुरू करता, मैसेज आ गया कि भाई तुहाडी आवाज़ नहीं आ रही वीर जी, शुक्रिया दसण लई। अच्छा गल इस कि गल मैं तो गल कर रहा सा कि मैं जनाब तुम गाँव सुन रहे सो इलीगल वैपन, तो ना मैं वीडियो देख रहा सा नाल, मैं अचानक याद आया कि यार एक बंदा आया जिहड़ा मेरा ना मास्टर वर्गा लगता पिया सी। मास्टर समझते हो ना यार बंदे दे, मतलब कि कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ जानू पता है उत्थे एक मास्टर होंदा है जिथे जिहदे नाल तुहाडा ही मतलब कि लाइक तुहाडी बहुत अच्छी बाउंडिंग भी होंदी है, लेकिन तुहानू सर प्यार भी करदा है, लेकिन तुहानू जिहड़ा मास्टर है ना उह तुहानू मांझा भी ला के रखदा है। मांझा मीनस यू नो मतलब तुहाडी ट्रीटमेंट करदा रहिंदा है कि तुसीं एक अच्छे ट्रैक ते चलदे रहो। ते मैं कहना वा कि अगर सानू भी उस टाइम साडी ट्रीटमेंट ना होंदी ते अज असीं इस ट्रैक ते ना होंदे, असीं भी बिगड़ बुगड़ जाणा सी। ते हर बच्चा जिहड़ा होंदा ना अपनी एज च जिहड़ा होंदा ना छोटी होंदे छोटे होंदे लाजमी लाजमी जी गल है वो शरारत करदा है, ते जहरी गल है अगर वो शरारत नहीं करेगा ते ऑफकोर्स फिर वो अबनॉर्मल लगेगा। ते अबनॉर्मल बच्चियां दे बारे ही तुहानू पता है कि पेरेंट्स बड़े फिक्रमंद हो जांदे ने, फिर यू नो फिर उन्हां नू लुक आफ्टर करनी पैंदी है कि यार पता नहीं की वजह। मैं कहना वा कि जिहड़ा बच्चा शरारत ना करे उन्हूं चैक करो शरारत क्यों नहीं कर रहा, उहदे कोल शरारत करवाओ। समटाइम ऐसा होंदा है कि लोग यह भी चीज़ सोचते हैं कि यार बच्चा शरारत नहीं कर रहा तो ये ठीक है जी, ये बच्चा साऊ है। साऊ बच्चा नहीं है, बच्चा कभी भी साऊ नहीं होया, बच्चा शरारत करता है। कभी आके असी मैच्योर एज च आके किसी शरारत की नहीं, तो तुसी कर भी लैनी है तुसी कड़ा मन जाना। खैर गल हो रही थी इस तरह की कि मैं तुम्हें गल सुना रहा कि सानू जनाब इस तरह के मामलात के ना सानू बड़ा मतलब कि सानू ट्रीटमेंट दी गई, सानू अच्छा अच्छा ट्रीट किया गया। तो होप मैं उम्मीद करना वा तुम जे जे मेरे सुन रहे हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा ट्रीट किया गया होगा। सारी गल है वह जो होंगे सन साढ़े पुराने टीचरस लाइक हूँ के टीचरस जो कहें ना हूँ भी यह हिसाब होंगे कि जी प्यार नहीं मार मार नहीं प्यार, सॉरी पहला होंगे सी प्यार नहीं मार, हूँ होंगे मार नहीं प्यार। लेकिन यह भी गल साढ़े सुनी जाती सी कि जो साढ़े मतलब कि मेरे खास मैं तुम्हें अपनी गल सुना, मेरा बापू जदों आता ना स्कूल तो स्कूल उन्हें आना तो उन्होंने आके गल आख देनी कि बच्चा ताड़ा है हड्डियाँ साड़ियाँ गोश ताड़ा। उहदा गल उन्होंने गल करन दा मकसद तां हुंदा सी, इह गल करन दा सिर्फ वजह यह सी कि साडा बच्चा राहे रास्त ते रहे, मतलब बंदे का पुत्र बन के रहे, क्यों क्योंकि बच्चे असी शरारती बहुत सन। तो हूँ जिस तरह मामला बदलते जा रहे हैं तो पता जरा पंजाब तो है उन्होंने तो पता होएगा, तो जरा पंजाब के कॉलेज या स्कूल नहीं पढ़िया तो उन्होंने नहीं पता होना कि उधर के हालात ने। लेकिन मैं उधर के सारे हालात दसागा क्योंकि मेरा काम ही है मैं दसना तो थोड़ा काम है जानना। खैर उधर ते आने फिलहाल है तुहानू गल मैं आके सुनावांगा दोबारा बाद क्योंकि हुण आ रही है कमर्शियल ब्रेक। तो कमर्शियल ब्रेक दे विच तुसी बस तकरीबन मैं तुसी यह समझो कि 3-4 मिनटां च वापस आया तुहाडे कोल। ओके डार्लिंग

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स बाय

वेलकम बैक। बिल्कुल, शनाज जी का एक होर मैसेज आ गया। शनाज जी ने एक तीली वाली गल पूछी सी, वह भी बड़ी वधिया सी। ओदी भी असी गल वह भी गल असी जिहड़ी है ना वह कंटिन्यू करांगे जे। तो एक जनाब जी उन्होंने एक होर गल मेरे को पूछी, कहिंदी जे एक तुसी फरमाइश होर पूरी कर दिओ तो मैं जनाब इत्थे बैठे फरमाइशां पूरी करना, दसो मिठाई का डब्बा पजा छोड़ा। खैर, उन्होंने मैनू गल आखी है, ऐ फन सी, इहनू मजाक लो, तुसी गल का माइंड ना करिओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि एक होर निक्की जी फरमाइश जे पूरी कर सकते हो, जी करदा मर जाने ला दिओ, छन्नी कर दे सीना मेरा, डाल दे सारी गोलियां वे, अज मेरा जी करदा मर जाने आ।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station
8: that plays
9: foot tapping music.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM। हमने बात की थी मुआवजे की और इस बात की कि किस तरह हम दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी से मायूस होने लगते हैं। यहाँ एक और बात बहुत ज़रूरी है, वो है छोटी कामयाबियाँ यानी स्मॉल विंस की कदर करना। हम अक्सर इतने बड़े बड़े ख्वाब देख लेते हैं कि अगर वो एक रात में पूरे ना हो तो हम खुद को नाकाम समझना शुरू कर देते हैं। मैंने तो सोचा था मैं इस साल इतना कमा लूँगा, मैंने सोचा था मेरा बिज़नेस इतना बड़ा हो जाएगा, मैंने सोचा था मैं पूरे 10 किलो वज़न करूँगा, और जब वो बड़ा हदफ हासिल नहीं होता तो हम हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं और जो छोटी छोटी पेशरफ्त हमने की होती है उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपने अपना वज़न कम करने का इरादा किया और महीने बाद सिर्फ 1 किलो कम हुआ तो नाकामी नहीं है, इस बात का सबूत है कि आपने कोशिश की और वो कोशिश रंग ला रही है। अगर आप किसी ने किसी नए हुनर का सिर्फ एक सबक भी सीख लिया है तो आप उन लोगों से बेहतर हैं जिन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की। ज़िंदगी की रफ्तार कभी मुसलसल एक जैसी नहीं रहती, कभी 100 की स्पीड से आगे बढ़ेंगे तो कभी आपको गाड़ी पहले गियर में चलानी पड़ेगी, कभी कभी ऐसा भी होगा गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाएगी। यानी ज़िंदगी में कोई नाकामी आएगी, कोई नुकसान होगा या कोई दिल टूटेगा, लेकिन नाकामी का मतलब सफ़र का खात्मा नहीं होता। नाकामी सिर्फ इस बात का इशारा होता है कि तरीका बदलें, मंजिल नहीं। दुनिया का कोई भी कामयाब इंसान उठाकर देख लें, उसकी कहानी में कामयाबी की चमक से ज़्यादा नाकामियों के दाग होंगे। वो बार बार गिरा लेकिन हर बार उसने अपने घंटों के धूल चाड़ी और खड़ा हुआ और दोबारा कदम आगे बढ़ाया। अगर आज इस बुध के दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हार रहे हैं या आपका मंसूबा नाकाम हो गया तो मेरी बात कान खोल कर सुन लें। यह ज़िंदगी की आखिरी सफ़ा नहीं है, यह सिर्फ एक चैप्टर, डायरी मत बंद होने दें। अगला सफ़ा पलटें, कलम हाथ में लें और एक नई शुरुआत करें। दोबारा शुरू करने से कभी मत डरिए, क्योंकि इस बार आप बिल्कुल सिफर से शुरू नहीं करें बल्कि इस बार आप तजर्बे से शुरू करें। अब सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा कि सब खत्म हो गया लेकिन फिर आपने दोबारा शुरुआत की और पहले से भी बेहतर बनकर सामने आए।

की एक बरसाती में रहने वाला। आज यहां आया है मुंबई बेचने। बदले में कुछ तो चाहता होगा। क्या? मांडवा रावण से उसकी लंका ही मांग ली।

रेडियो फजा एफएम 97 पर मैं हूं आपके साथ और बात हो रही है जिंदगी की रफ्तार, हौसले और एक नए जज्बे की। बहुत से लोग मुझे अक्सर कहते हैं, यार जब भी तक मोटिवेशन ना आए काम करने का मूड ही नहीं बनता, मैं जरा मोटिवेट हो जाऊं फिर ये प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। अगर आप भी इसी उम्मीद में बैठे कि आसमान से कोई परियों की परियां उतरेंगी या अचानक कोई ऐसा जादुई लम्हा आएगा जो आपकी रातों को रात चार्ज कर देगा या आपको रातों रात चार्ज करेगा, तो बहुत बड़े मोहलते में आप है ही। मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं जो पहले आती है और काम बाद में होता है, सच्चाई इसके बिल्कुल बरक्स है। अमल एक्शन पहले होते हैं, मोटिवेशन उसके बाद पैदा होती है। जब आप किसी काम का पहला कदम उठाते हैं, चाहे आपका बिल्कुल दिल भी ना चाह रहा हो, तो जैसे ही काम थोड़ा सा आगे बढ़ता है आपका जहन इसमें मसरूफ होता है और फिर खुद ब खुद आपके अंदाज उस काम को मुकम्मल करने का जज्बा जागता है। हम लोग एक अजीब दायरे में फंसे रहते हैं, हम कहते हैं पहले मूड बनेगा तो काम करूंगा। हालांकि हकीकत यह कि जब काम करोगे तो मूड बनेगा। अगर आज आपको अपने ऑफिस में कोई बोरिंग काम करना है, कोई मुश्किल ईमेल लिखनी है या अपने कमरे की सफाई करनी है, तो मूड बनने का इंतजार करना छोड़ दें, कड़ी देखें अगले 5 मिनट के लिए, हर डिस्ट्रक्शन को साइड पर रखें और बस शुरू हो जाएं। आप देखेंगे कि जो काम आपको पहाड़ लग रहा था वो महज 5 मिनट की तवज्जो से कितना आसान हो जाता है। अपनी सलाहियतों पर शक करना बंद कीजिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक अलग ताकत और सलाहियत रखी है। मसला सलाहियत का नहीं होता, मसला पहले कदम का होता है जो हम खौफ या सुस्ती की वजह से नहीं उठाते। अगर आपके सामने भी इस वक्त कोई ऐसा काम पड़ा है जिसका सोचकर आपका मूड खराब हो रहा है, तो जरा रेडियो की आवाज थोड़ी तेज कीजिए और बगैर कुछ सोचे इस काम पर हाथ डालिए, देखिए फिर कैसे काम मिनटों में खत्म होता है। अब जरा रेडियो की आवाज तेज कीजिए और ये खूबसूरत सा गाना समाप्त कीजिए, सुनते रहिए फजा 97।

वेलकम बैक टू आफ्टरनून मिक्स ऑन रेडियो फजा 97.1 FM। हम अपनी जिंदगी में जितने फैसले करते हैं उनमें से आधे से ज्यादा फैसले हम अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये सोचकर करते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये छोटा सा काम शुरू किया, तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे अगर मैंने अपने करियर बदला, तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे अगर मैं इस मुकाबले में हार गया, तो लोग मुझ पर हंसेंगे। हमने अपनी जिंदगी का कंट्रोल, अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में थमा दी है। हम अपने आप को दूसरों की नजरों से देखते हैं, अगर लोग तारीफ करें तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई तनकीद कर दे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन जरा ठंडे दिल से सोचिए, वो लोग कौन है? आप सुन रहे होंगे कि मैंने कहा ठंडे दिल से सोचिए, ठंडे दिमाग से नहीं, क्योंकि फैसला आप दिल से लिया करिए। क्या वो लोग आपके घर का राशन चलाते हैं? क्या वो आपका दुख में दर्द बांटते हैं? क्या वो आपके बिजली का बिल अदा करते हैं? नहीं, तो फिर उनकी राय इतनी अहम क्यों होगी? आप उनकी वजह से अपने ख्वाब, अपनी सलाहियतें और अपनी जिंदगी की रफ्तार कुर्बान कर दें। एक बात हमेशा याद रखें, लोगों का काम है कहना, अगर आप कुछ करेंगे तब भी वो कहेंगे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी वो कहेंगे। हर बात का जवाब देना, हर तनकीद पर सफाई पेश करना और हर इंसान को मुतमईन करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बेहतरीन जवाब खामोशी है और अपना काम करते रहना है।

जिंदगी की इस रफ्तार दौड़ में जहां हम सब पैसे, करियर और तरक्की और कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, हमें से अक्सर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हम उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो वाकई हमारे लिए अहम होते हैं, हमारे वालदैन, हमारा जीवन साथी, हमारे बच्चे और हमारे सच्चे दोस्त। हम अक्सर कहते हैं यार काम बहुत ज़्यादा है, घर वालों के लिए टाइम ही नहीं मिलता, या अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन करके कहते हैं बस यार मसरूफियत इतनी है कि बात ही नहीं बहुत पाती। लेकिन सोचिए इस तमाम कामयाबी, सारे पैसे और इस आला मकाम का क्या फ़ायदा अगर दिन के अख्ताम पर आपके पास अपनी खुशियाँ बांटने के लिए कोई अपना ही ना हो। ताल्लुकात बिल्कुल उन पौधों की तरह होते हैं जिन्हें रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है। अगर आप ही सोचें कि भाई एक ही बार साल बाद जाकर पौधों में 10 बाल्टी पानी डाल दूँ तो वो हरा भरा रहेगा, तो ऐसा नहीं होता, पौधा सूख जाता है। बिल्कुल इसी तरह रिश्तों को भी आपकी तवज्जो, आपके वक्त और आपके छोटे छोटे प्यार भरे बोल की जरूरत होती है। यहीं एक पैगाम शामिल करेंगे, मोहम्मद नासिर कराची पाकिस्तान से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रेडियो फजा। दिन में चाहे कितनी ही मसरूफियत क्यों ना हो, अपने अम्मी अबू के पास 10 मिनट बैठकर उनका हाल पूछना, अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके स्कूल की बातें सुनना, या अपने किसी पुराने दोस्त को महज ये मैसेज कर देना कि यार बस तुम्हारी याद आई थी, सोचा हाल पूछ लूँ, इसमें चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लम्हात आपके रिश्तों में वो हरारत बरकरार रखते हैं जो बड़ी से बड़ी गाड़ी या बंगला नहीं दे सकता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल हो सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त और रिश्तों का मान एक बार टूट जाए तो दोबारा उस तरह नहीं जुड़ता। आज जब आप शाम को काम से वापस घर लौटे तो अपने फ़ोन एक तरफ रखते हैं, थोड़ी देर के लिए नोटिफिकेशंस को भूल जाएं, अपने प्यारों के साथ बैठकर चाय की प्याली पिए, उनकी सुने अपनी कहें, जिंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं बल्कि जिंदगी उन खूबसूरत रिश्तों से मिलकर बनती है। अगर आपके जहन में भी इस वक्त किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार का ख्याल आ रहा है जिससे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई तो इस सेशन के बाद उन्हें एक फ़ोन लाजमी कीजिएगा। रेडियो फजा FM 97.1 पर हम साथ हैं। इस बुध की खूबसूरत दोपहर में जब हम रफ्तार की बात करते हैं तो तेज़ चलने का मतलब ये हर किसी नहीं होता कि हम जल्दबाजी में अपने हवास खो बैठें, गाड़ी तेज़ चलाते हुए कि ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर ना रहे तो क्या होता है, हादसा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में जल्दबाजी, गुस्सा और जज्बातियत आ जाए तो हमारी ज़िंदगी का एक्सीडेंट होना तय है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

आप अपनी गलतियों को तस्लीम करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर से तकब्बुर ख़त्म होता है और आजजी आती है। और सच्ची बात तो एक इंसान सीखता ही तब है जब वो मानता है कि उससे गलती हुई, दूसरों की खामियां नज़रअंदाज करना सीखें और अपनी खामियों को सुधारने की कोशिश करें। रिस्क, इज्जत और कामयाबी उन लोगों का कदम चूमती है जो अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं और जिनकी नीयत साफ होती है। पाक नीयत और मुसलसल कोशिश, ये दो ऐसे हथियार हैं जो दुनिया की किसी भी मुश्किल को शिकस्त दे सकते हैं।

0: फजान 97.1 FM।
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus, and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic, and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner, and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM टू 8 PM, संडे 10 AM टू 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Huzzah 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
12: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: This is a public service announcement.
11: The station.
12: That plays
13: foot tapping music.
14: Hazar 97.1 FM.

इस प्रोग्राम में एक्चुअली मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड के इस शो में मैं करता हूं अपने तमाम सामाइन को खुश आमदेद दिल की अदा गहराइयों से। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बखैरियत होंगे और आपके मामलात जिंदगी भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। वो कौन है कि जिसकी जिंदगी में दुश्वारियां और मुश्किलें नहीं आती, और वो कौन है जो इनका सामना नहीं करता। और वो कौन है जिसके मामले वक्त के साथ साथ हल नहीं होते। वो कौन है जिसकी जिंदगी में खुशियां नहीं आती। वो कौन है कि जिसकी जिंदगी में प्यार और मोहब्बत नहीं होती। वो कौन है जिसकी जिंदगी में रिश्ते नहीं होते। वो कौन है जिसकी जिंदगी में अपने नहीं होते। हम कौन हैं? हम क्या हैं? एज एन इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप और एज अ सोसाइटी। इंतहाई यूनिक प्रोग्राम आपके लिए लाया जाता है एवरी वेनसडे 7 to 9 PM और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए मैं हाजिर होता हूं और मेरा नाम है जकी खान, जिसे आप सुन रहे हैं पिछले 15 साल से। और मैं आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि जो आप मुझे पिछले 15 साल से बर्दाश्त भी कर रहे हैं। आज के दौर में कौन किसे बर्दाश्त करता है।

0: हम जानते हैं कि ये एआई का दौर है, लेकिन इस एआई के दौर में हम क्या अपनी क्रिएटिविटी को भी खो रहे हैं? दौर है ना, एज है, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है। तो हम अपनी टॉपिक से कोशिश करेंगे, अपनी डिस्कशन से हम बिल्कुल भी ना हटें, अपनी डिस्कशन में ही रहें। हमारे पास आज आपके लिए बहुत सारे सवालात भी होंगे। उन सवालात का जवाब देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए एक ही नंबर है, 01157100971। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इंटरटेनमेंट से। एक खूबसूरत सा गाना आपको सुनाते हैं, जो कि फिल्म है, मेरे ख्याल से बेताब फिल्म का ये गाना है, जब हम जवां होंगे। लेकिन इस गाने से पहले देखते हैं हमारे साथ कोई कॉलर हैं जो कि शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं। हेलो रेडियो फजा।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी अवैध चौहान बात कर रहा हूँ, नाटीगंज से, छोटा जूनियर कप्तान के नाम से मुझे लोग जानते हैं ऑलमोस्ट।
0: अच्छा, पहले तो अवैध ये बताएं कि आपको जूनियर कप्तान के नाम से क्यों जानते हैं?
1: जूनियर कप्तान के नाम से इसलिए जानते हैं, क्यों ना कि मेरा जो तल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब की जमात से।
0: अच्छा,
1: तो मैंने 2015 से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, और जब पीटीआई की गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पाकिस्तान में वजूद में आई, तो उस वक्त एक मीटिंग हुई थी, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान, शाह महमूद कुरैशी साहब, तो उनके एजाज में मैं एज अ कश्मीरी था, तो मैंने हमारी टीम थी कश्मीर की, और हमने 1,70,000 वोटर लिस्ट की पर्ची बनाई। इसके अलावा हमने लोगों को कॉल्स की, तो लोगों को इनवाइट किया कि आप खान साहब को वोट दे, तो वो इस एजाज के तौर पे उन सब ने, उन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम इसको जूनियर कप्तान कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान और कश्मीर में ये हमारा जूनियर कप्तान।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप क्रिकेट खेलते थे तो इसलिए आपको जूनियर कप्तान कहा जाता है। और सुनाए, वैसे ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, रेडियो को देखते रहते हैं, वो सबको जानते भी हैं, सुनते भी हैं
0: जी।
1: और माशाल्लाह आपका जो काम है वो वेरी नाइस है जी, हमें खुशी होती है जब जिस तरह के दूसरी सिटीज में, यूके के अंदर
0: जी,
1: दूसरी सिटीज में हम सबको फॉलो करते हैं
0: जी,
1: इस तरह जब हम अपनी सिटी नॉटिंघम, अपने घर को जब हम एज अ, जब हर तरफ एज अ नॉटिंघम का कोई भी इवेंट हो गया, कोई भी एक्टिविटीज होगी, तो हमें खुशी होती है, दिल ही खुशी होती है कि ये हमारा घर है और हमारे घर को हर बंदा सुन रहा है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है वैस, और ये हमारे लिए बिल्कुल फख्र की बात है, और कई सालों से ये सिलसिला जारी है, और इसी तरह आप लोगों के इत्तेफाक से, आप लोगों के इंटरेस्ट से ये सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। आज का हमारा उन्वान है, आप जैसे जानते हैं कि हर हफ्ते हमारे पास एक टॉपिक है, एक डिस्कशन है, तो क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड ये शो है, जिसमें हमारी आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको बिल्कुल अनफिल्टर करके हम दिखाते हैं, उस पर बात भी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एज, उम्र। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ चंद सवाल आता आपके लिए।
1: एज के हवाले से मतलब मैं थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा कि मतलब अपनी राय के किस किस हवाले से दूं।
0: अच्छा देखें, चले मैं आपके लिए एक आसान कर देता हूँ। कहते हैं कि उम्र जो है यकीनन हर साल हमारी बढ़ती है, लेकिन हमारी जिंदगी घटती है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये कहा जाता है, एक बात बहुत अहम फहम है, कि एज इज जस्ट अ नंबर, यानी कि जो उम्र है ये सिर्फ नंबर है, आदाद हैं, कम होते हैं या बढ़ते हैं, कम होते हैं जब आपकी मौत वाकया हो जाती है। तो और एज के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि क्या उम्र का के हिसाब से जो इस इंसान का जो तजुर्बा है वो बड़ा होता है या फिर उम्र बड़ी होती है।
1: मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो उम्र है वो 28 ईयर्स ओल्ड है। और मेरे ख्याल से ये है कि इसमें जो इंसान का जब एज आई थिंक वही रहती है और हम शायद हम बड़े हो जाते हैं और हमें एक्सपीरियंस एवरी डे लाइफ हम मैच्योर हो जाते हैं, हमें बेशुमार चीज़ें जिस तरह बचपन में होती है कि हमें कई चीज़ हमें अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें हर चीज़ का तजर्बा आप कह सकते हैं कि इंसान छोटा हो या बड़ा हो वो एक वो लाइफ एक इंसान है, चाहे वो छोटी एज का हो बड़ी का हो, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अंडरस्टैंड करना लाइक हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना कर हमें आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ इस तरह नहीं है, इस तरह करनी है, जो हमें बचपन में नहीं होता जिस चीज़ का आइडिया। तो आई थिंक इंसान की जो उम्र है वो सेम है, लेकिन आइडिया है कि आपको एक्सपीरियंस करने से आपको लाइक अच्छा लाइक वो हो जाता है कि आइडियाज हो जाते हैं।
0: अच्छा, एज के हिसाब से ये भी कहा जाता है ना कि लोग ये समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए, और बच्चों को ना बड़ा शौक होता है बड़ा होने का, जल्दी जल्दी बस हम बड़े हो जाएं, और ये अंदाज़ा नहीं होता कि बड़े होके हमें फिर जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उसका सामना करना पड़ेगा। तो आपका तजुर्बा कैसे रहा जब आप छोटे थे, आपको शौक था बहुत जल्दी बड़ा होने का?
1: यकीन मानने के लिए मैं 2015 से एक्टिव हुआ, उससे पहले और आज मुझे आज का जो दिन है वो अच्छा लगता है अपने पुराने दिनों से। लेकिन जब हम इस एज में पहुंच जाते हैं जिस तरह के कभी कभी आप ज्यादा काम करते हो आप थक जाए तो आपको फील होता है नहीं यार हम बचपन में ठीक थे, कोई टेंशन नहीं थी, हमारे बचपन के दोस्त थे, हम क्रिकेट खेलने चले गए, हमने जब बारिश हुई तो हम इकट्ठे होके वो बांटे नहीं होते बांटे खेलना शुरू कर लिए अंदर, बाहर बारिश हो रही है हम अंदर बांटे खेलना शुरू कर देते। तो वो फिर बचपन की देखभाल ऐसी यादें हैं कि जो बंदा कहता है नहीं यार बड़ा नहीं थी हम छोटे ठीक थे, हमें खुराक मिल जाती है, अम्मी हर चीज प्रोवाइड करती, डैड और हर चीज लाइक
0: यानी कि अब सब कुछ खुद करना पड़ता है।
1: हाँ, और जब हम बड़े हुए तो हमें फील हुआ नहीं यार ये तो एवरी डे हमें लाइक हमारी जो लाइफ है वो जिम्मेदारियों में जा रही है।
0: तो ये बताएं कि किसी की एज को जज करना सही है?
1: किसी की एज को सही भी है नहीं भी है, कुछ लोग होते हैं लाइक जिम्मेदारियों की वजह से वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, तो हम उसको ना वो चीज को हम शायद नहीं समझ सकते। कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज प्लेयर पे मिल जाती है और वो ऑलवेज जवान रहते हैं, हम कहते नहीं यार ये तो बड़ा वो उम्र के लिहाज से, हालांकि उसकी उम्र ज्यादा होगी लेकिन वो लग रहा होगा कि ये बिल्कुल लुकिंग लाइक कम होगी और वो वैसे एज में वो बड़ा होगा। कुछ लोग होते हैं जो होते यंग हैं लेकिन अंदर से वो बेचारे एक जिम्मेदारी में होते हैं और उनकी उम्र ये समझे कि वो 50-60 से भी ऊपर है, तो हम किसी की एज पे जज नहीं कर सकते। जब मेरा अपना ओपिनियन
0: वो कहते हैं ना कि ये जो 10 साल का गैप है ना इसे जिसे हम डेकेड कहते हैं, एक डेकेड का फर्क हर एक इंसान की उम्र में जज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कोई 25 साल का है तो वो लगता है 35 साल का, अगर कोई 50 साल का है तो वो लगता है 40 साल का, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी उम्र से ज़्यादा यंग लगते हैं, तो उनका यंग लगने में क्या राज है?
1: उनका यंग लगने में राज ये है कि वो कुछ लोग होते हैं जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, ये हो गया वन, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी सेहत रखने का अपनी अच्छी सेहत रखने का मौका नहीं मिलता। एग्जाम्पल टू एक बंदे पे जिम्मेदारियां टू मच है, अब वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अब उसमें टाइम ही नहीं है। ऐसे यूके में तो फिर भी आपको थोड़ा सा मौका मिल जाता है, लेकिन आप पाकिस्तान की बात करें तो हमारे मुल्क में आपको पता है कि टू मच आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे तो फिर जाहिर सी बात आपको इन चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैं ये समझता हूँ कि जहां तक जिम्मेदारियों की बात है तो ऐसे जिम्मेदारी पे आप कह सकते हैं जिसको ज्यादा बोझ है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है।
0: अच्छा, ये तो हुई वो हकीकत जो कि हम सब जानते हैं, लेकिन एक और हकीकत वो है जो कि पोशीदा है। वो पोशीदा हकीकत ये है कि अगर एक इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता ना, ये भी एक मुहावरा है, कहते हैं कि अपने आप से प्यार करो तो लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, वो शायद इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप अपना ख्याल रखेंगे। जिम्मेदारियों की अगर बात की जाए तो आप पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश, हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, वो जब اپنے ملک کو چھوڑ کر یو کے یا پھر یورپ کسی بھی ملک میں آ جاتے ہیں تو ان کا رہن سہن, کھانا پینا, ان کی روٹین بالکل بدل جاتی ہے. لیکن وہ یہاں پر آ کے اتنے صحت مند اور ینگ دکھنا شروع کیوں ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ایسا نہیں ہوتا, اس کی کیا وجہ ہے؟
1: اس کی وجہ یہ ہے شاید ہمیں ہمارے یہاں ہمارا کسی بھی چیز کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: آپ کی بیماری ہو وہ آپ کے دماغ کے ساتھ جڑی ہے. اب ہمارے دماغ میں یہ تھا, میں یو کے آنے سے پہلے میں یو کے دیکھتا تھا, مجھے بڑا خوبصورت یہ جو ہاؤس نظر آتے ہیں باہر سے, اتنے ہم کہتے تھے کہ بہت خوبصورت ہے یو کے. ٹھیک ہے, ہاؤس دیکھے جو روڈ دیکھی کلین, ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ یار یہ ملک بڑا خوبصورت ہے, یہاں پہ چلیں گے ہم, یہ کریں گے ہم, یہاں پہ جم بھی لگائیں گے. وہی بات ہوئی, میں یو کے آیا, اب مکان کے جو باہر سے تو ہاؤس اچھے لگتے ہیں, جب اندر گئے چھوٹے چھوٹے ہاؤس. اچھا دوسری انٹرسٹنگ بات یہ, پھر میں یہاں سے آنے کے بعد میں مجھے میں نے کہا یار سارے لوگ جم لگاتے ہیں, ہم کیوں نہ لگائیں. اچھا پاکستان میں مجھے یہ شوق نہیں پڑا, یہاں پہ آ کے میں نے جم بھی شروع کیا. اچھا واقعی وہ یہ بات ہے کہ مجھے خوشی ہونے لگی, میں جم لگا رہا ہوں, میری صحت اچھی ہو رہی ہے. اچھا پھر میں یہ وہی بات ہے کہ کہنے کا بات یہ کہ آپ کے دماغ سے کنیکشن ہے. آپ پاکستان میں ہم تو وہاں پہ ہم بہت زیادہ لیزی ہوتے ہیں, تو شاید یہ آئی تھنک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے دماغ میں ہو. اب کچھ لوگ پاکستان میں بھی خوشحال ہیں الحمدللہ سیٹل ہیں, لیکن کچھ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ نہیں یار یو کے جائیں گے اور ادھر سیٹل ہوں گے, اور واقعی وہ ہو بھی جاتے ہیں.
0: اور دوسرا ویسے یہ نا کہ آخری بات ہم کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے اپنے شو کی طرف. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. اور آخری بات یہ ہے کہ آخری تو نہیں ہے, اس سے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن آپ سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات سے بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا خیال یقیناً رکھنا چاہیے, اور اس سے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق صرف اور صرف جو ہے وہ انسان کی اپنی ول پاور سے ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک ایج پہ جا کے انسان یہ سوچتا ہے کہ اب میں نے کس کے لیے تیار ہونا ہے, اب میں نے کس کے لیے ایسے کپڑے پہننے ہیں, تو بس شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, تو دے لیٹ دیم سیلف گو. آپ اپنے آپ کو اپنے حوالے نہیں رکھتے, آپ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگ امانت میں خیانت کر دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ویس بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اسی طرح ہمارے ہر شو میں شامل ہوا کیجیے.
1: انشاءاللہ میں مزید جو باتیں ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی سیکھیں گے, کچھ ہم بھی بتائیں گے اپنی طرف سے. بات کرنے سے ہی بات آگے بڑھتی ہے.
0: بے شک کیونکہ گفتگو کا سلسلہ تو ہم چاہیں تو ایک گھنٹے تک لے کے جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور بھی کالرز آئیں گے, اس کے علاوہ ہمیں اور بھی پروگرام کے بارے میں بہت سی باتیں کرنی ہیں. بہت شکریہ اویس, تھینک یو ویری
1: مچ.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں, یہ ہیں اویس جنہوں نے آ کے اپنے رائے کا اظہار کیا. آپ بھی کر سکتے ہیں 0115-7100-971 پہ. جس آپ سب سے کہا تھا کہ آپ کو ایک خوبصورت سا ٹریک سنانا ہے, اور آپ کو سناتے ہیں فرام دا فلم بے تاب جب ہم جوان ہوں گے, اس کا ریمکس سناتے ہیں آپ کو. آج میں جتنی پلے لسٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں نا, وہ ساری کی ساری بڑی مزیدار ہے, پرانے گانوں کے ریمکس ہیں. سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. And keep listening for the 97.1 FM and Dab.

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम। दिस इज मी जकी खान, जिसे आप सुनते हैं हर बुध की शाम 7 से लेकर 9 बजे तक मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड के इस शो में। आज का हमारा उन्वान, आज का हमारा टॉपिक है उम्र, यानी कि एज। उम्र की कम से कम चार शक्लें हैं। पहली तारीखी या कैलेंडर वाली उम्र, जो हमारे कैलेंडर जब हमारी पैदाइश होती है। दूसरी जिस्मानी उम्र, हमारा जिस्म कितना मजबूत, मुतहर्रिक या थका हुआ महसूस करता है। तीसरी जहनी और जज्बाती उम्र, हम हालात को कितनी समझदारी से देखते और संभालते हैं। और चौथी मुआशरती उम्र, यानी वो तवक्कुआत जो मुआशरा हर उम्र के साथ जोड़ देता है। यानी कि हमारे पास ये हमारी ये चार उम्र की किस्में हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये चारों उम्रें हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक नौजवान के कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां हो सकती हैं कि वो अपनी उम्र से बहुत बड़ा महसूस करे, जैसे अभी अवैस ने कहा। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग शख्स तजस्सुस, मजा और उम्मीद में बहुत से नौजवानों से आगे हो सकता है। मैं हमारे तमाम सामईन और लिसनर्स जो हैं, आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप अपनी असल उम्र कहाँ महसूस करते हैं? अपने जिस्म में, अपने जहन में या अपनी जिम्मेदारियों में? क्या आप कभी अपनी उम्र से बड़े या छोटे महसूस हुए? हमारी नज़र में मसला उम्र का नहीं है, उम्र के बारे में बनाए गए फैसलों का है। हम अक्सर किसी नौजवान से कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, हमें लगता है कि वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। और जो आजकल के बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि ये एजड हैं, हमारे बड़े हैं, इनको क्या पता, हमें ज़्यादा पता है, क्योंकि वो मॉडर्न दौर के बच्चे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि एक उम्र उन्होंने भी गुजारी है ना। और किसी बड़ी उम्र के शख्स से कहते हैं कि अब आपके लिए देर हो गई है। दोनों जुमलों में एक मुश्तरिक बात है, हम इस इंसान को अपनी सलाहियत साबित करने का मौका नहीं दे रहे। अपनी सलाहियत को साबित करने के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपनी क्रिएटिविटी को आपने माना नहीं है, जो कि अक्सर मैं अपने शो में कहा करता हूं कि जो इंसान है, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, इस दुनिया में भेजा, तो किसी न किसी खासियत के साथ भेजा है। और वो खासियत क्या है, वो हमें वक्त के साथ साथ हमें पता चलती है। या तो हमारा कोई बहुत करीबी जो हमें अच्छे से जानता होगा, हमारा हमदर्द होगा, वो आपको बताएगा कि भाई तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हें ये करना चाहिए। या फिर एक उम्र के हिस्से में जाके हमें ये समझ आ जाएगी, हमें एहसास होगा कि यार यही हमारे लिए ठीक है। तो आप एक जगह टिक जाते हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि कहीं टिकते नहीं हैं, कभी एक जगह ट्राई करते हैं, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, कभी चौथी जगह, एंड दे गो ऑन। आप भी अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो हमें कॉल कर सकते हैं। 01157100971 इज़ द नंबर। इसी के साथ सुनाते हैं आपको एक और खूबसूरत सा ट्रैक, और उम्मीद है आपको ये ट्रैक भी पसंद आएगा। कोशिश तो की है कि इस टॉपिक के हवाले से, आज की डिस्कशन के हवाले से को हमें अच्छे अच्छे ट्रैक मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इतने ज़्यादा ट्रैक्स नहीं हैं इस डिस्कशन को लेके। लेकिन हमने कोशिश की है आपके लिए पुराने गानों के रीमिक्स लेकर आए। छोटी सी उम्र में

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Get ready to move. It's all about the beats. Wow.
8: Only you are listening 97.1 FM.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। ना सिर्फ एफएम पे बल्कि आप हमें अभी डैप पे भी सुन सकते हैं। ऑनलाइन सुनना चाहें तो radiofaza.co.uk इज आवर वेबसाइट, और हमारी एक ऐप है रेडियो फजा की, आप उसे डाउनलोड कीजिए और उसे आप हमें उस पर भी सुन सकते हैं। वेलकम बैक, हमारा शो पिछले एक घंटे से चल रहा है और हम एंटर हो चुके हैं अपने अगले सेगमेंट के जाने, और ये सेगमेंट रहेगा शाम 9 बजे तक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में। अगर कोई दुख है तो उन दुखों को ये सोच कर भूल जाइए कि खुशी भी आएगी। जो कहते हैं हर रात के बाद फिर सवेरा तो जरूर आता है, उस सवेरे का इंतजार कीजिए। जिंदगी बस इसी तरह से चलती जाती है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही सारी उम्र तमाम होती है। मैं हूं आप सबका होस्ट जकी खान, अगले प्रोग्राम लेके आता हूं एवरी वेडनेसडे 7 to 9 PM। हम बात कर रहे हैं आज एज के बारे में, तो अपने इस अगले सेगमेंट में हमें कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हमें एक मैसेज आया है आयशा का, वो कहती हैं कि मैं 28 साल की हूँ और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, किसी की शादी हो गई है, कोई तरक्की कर चुकी है, किसी का नया घर बना है, और मैं कंपैरिजन करती रहती हूँ अपनी लाइफ का और उनकी जिंदगी का, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इस दौड़ में पीछे रह गई हूँ। लेकिन बाज़ुकात ये भी सोचती हूँ कि क्या मुझे अपनी जिंदगी को देखना चाहिए कि मेरी जिंदगी किस तरह से गुजरी, मेरा बचपन कैसा था और मेरे घर वाले कितना मुझे सपोर्ट कर पाए। तो हर एक इंसान की जिंदगी एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए उसे नापना और तोलना नहीं चाहिए। और वो कहती हैं कि मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ लम्हात जो हैं उन्हें देखते हैं कि वो इस वक्त खुश हैं, कामयाब हैं, शादी हो चुकी है, नया घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली, और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी लाइफ बहुत ही चमकती हुई नजर आ रही है मुझे, लेकिन उनकी जिंदगी में क्या दुश्वारियां हैं मैं नहीं जानती। और दूसरी हमें एक स्टोरी शेयर की है इमरान ने, वो कहते हैं कि आई एम 52 ईयर्स ओल्ड एंड आई वांट टू चेंज माय करियर आफ्टर 20 ईयर्स इन वन फील्ड, बट माय वरी इज माय न्यू कोलीग्स आर गोना बी यंगर देन मी। देन आई आस्क अ क्वेश्चन टू माय सेल्फ, इफ आई मे वर्क फॉर अनदर

0: her husband, she feels isolated. She joins a community group, learns to use smartphone, and begins volunteering once a week. Her life does not become what it was before, but it becomes purposeful again. जिंदगी के किसी मोड में भी जाके वो कहते हैं ना कि हमें एक नई जिंदगी मिल गई या हमने एक नई जिंदगी शुरू कर ली। तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए जहां पर आपको लगे कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी एक नई जिंदगी आपका रास्ता देख रही है। जिस तरह कहते हैं ना कि जब सारे दर बंद हो जाते हैं तो एक दर ऐसा होता है जिसकी चाबी आपको ढूंढनी पड़ती है, वो देखना पड़ता है कि आप अपना रास्ता कैसे बनाएंगे, क्योंकि जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें लगता है कि आज तक जो कुछ हमने किया बस यही कुछ है। जैसे मिसाल दिया जाता है ना कि कुएं के मेंढक, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जिंदगी एक कुएं में होती है, एक वेल में, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, वो दुनिया देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये दुनिया तो कहीं और जा रही है और मैंने तो अपना वक्त ज़ाया कर दिया। जी हाँ, वक्त ज़ाया नहीं होता, वक्त तो वक्त है, किसके लिए ठहरता है। अब इन तीनों स्टोरीज को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो इसमें असल रुकावट उम्र नहीं है, रुकावट मुआजना, खौफ और दूसरों की राय थी। कभी भी उम्र हमें नहीं रोकती, उम्र के बारे में हमारा यकीन हमें रोकता है। कि अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत से हल हैं, वो हमें ढूंढने चाहिए। आप किसी कहानी से खुद को जोड़ सकते हैं कि आपने कभी अपनी जिंदगी को किसी और के टाइम टेबल से नापा है। हमें पैगाम भेजिए, या हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर हमारा वही है 01157100971। एक इंतहाई खूबसूरत सा ट्रैक आप सबको सुनाने जा रहा हूं, और आपने इस ट्रैक की
1: हमने अदा कर दिया, हम इश्क वाले हैं, मोहब्बत का तमाशा नहीं करते,
0: हम मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत का तमाशा नहीं करते, हम इसलिए जालिम।

0: हम इसलिए जालिम तेरा चर्चा नहीं करते। वाह बहुत खूब। हम इसलिए जालिम तेरा चर्चा नहीं करते, आशिक कभी माशूक को रुसवा नहीं किया करते। वैसे रुसवा करना, किसी को बदनाम करना, ये अपने आप में एक और टॉपिक है और इस पे भी एक ना एक दिन हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एज पे। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस पे बेस्ड है। जस्ट अ नंबर और समथिंग दैट डिफाइंस यू। यू कैन कॉल अस ऑन 0115710971। हमें व्हाट्सएप कीजिए या हमें कॉल कीजिए। एजियज्म, एजियज्म एक टर्म है जिसे यूज किया जाता है और उसका मतलब होता है कि जजिंग और लिमिटिंग पीपल बिकॉज ऑफ देयर एज। इट अफेक्ट्स ओल्डर पीपल बट यंग पीपल एक्सपीरियंस इट टू। अ यंगर पर्सन मे बी टोल्ड दे नो नथिंग अबाउट लाइफ। An older person may be assumed to dislike technology or resist every new idea. जी हाँ, उम्र की बुनियाद पर ये दोनों को ये सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है कि एजियज्म की जो ये टर्म है, इस पे हम ना लोगों को जज करते हैं और उसको लिमिटेड कर देते हैं। उम्र की बुनियाद पर तासुब एजियज्म कहा जाता है अगर हम इसे सिर्फ बुजुर्ग अफराद के साथ जोड़ते हैं, लेकिन नौजवान भी इसका सामना करते हैं। नौजवान से कहा जाता है कि तुम्हें जिंदगी का क्या पता, तो अभी तुम छोटे हो, तुम्हें अभी तजुर्बा नहीं है। जबकि बड़ी उम्र के शख्स से कहा जाता है कि आप नई टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, नौजवानों के पास ताज़ा तरीन नजरियात होते हैं, तवनाई और नए हालात को समझ की समझ बूझ होती है, और बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनके पास तजुर्बा, तनाजर और मुश्किल हालात से गुजरने की सलाहियत होती है। समझदार मुआशरा एक नस्ल को दूसरी नस्ल के बिलमुकाबिल नहीं खड़ा करता, वो दोनों की खूबियों को मिलाता है। देख लीजिए ना, किसी का एक्सपीरियंस हो, किसी की एनर्जी हो या किसी का पैसा हो, एक लम्हे के लिए अपने जुमलों पर जरा गौर कीजिए। आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता। क्या ये कि बड़ी उम्र के लोग कभी नहीं बदलते? ऐसे जुमले मजा में कहे भी जाएं तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जनरेशन में फासला ही पैदा करेंगे और कुछ नहीं। देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है। हेलो रेडियो फजा। सॉरी, कॉल हमें डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर हमें अगली कॉल लेनी पड़ेगी। हेलो रेडियो फजा। हेलो हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: जकी भाई कैसे हैं आप? ठीक है सर?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी कौन बात कर रहे हैं?
1: जकी भाई बासित बात कर रहा हूँ नॉटिंगहम से।
0: जी बासित भाई कैसे हैं आप? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो मैंने कहा आप कॉल करता हूँ, गपशप करने का दिल कर रहा था।
0: नहीं बिल्कुल, गपशप कीजिए, बताइए हमें आज के जो टॉपिक के बारे में। आपने तो काफी देर से सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में?
1: जकी भाई एक शेर है वो सुनाऊंगा और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है या मसला है वो आपके साथ डिस्कस करना है।
0: जी जी बताएं।
1: शेर काफी मशहूर शेर है, आपने सुना होगा कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो।
0: एक उम्र खर्च की है तुम पर,
1: तुम मेरा कीमती असासा हो।
0: तुम मेरा कीमती असासा हो।
1: तो बाद अवकात ऐसा होता है कि जिंदगी में आप किसी इंसान को या किसी प्रोफेशन को इवन आप अपना एक वक्त दे देते हैं, अपनी उम्र देते हैं, 10 साल 20 साल 5 साल जो भी है।
0: जी जी।
1: लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि आप शायद उसके लिए नहीं बने हुए या वो आपके लिए नहीं बना हुआ, तो उस चीज से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत से लोग हैं शायद उनको ये भी मेरी तरह ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी होगी, वो स्विचिंग करना चाहते हो लेकिन वो कर नहीं पा रहे।
0: इसको स्विच करना कह सकते हैं या फिर मूव ऑन करना कह सकते हैं। आज के दौर में, दौरे हाजिर में इसे कहा जाता है कि मूव ऑन होना, आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के मत देखिए। क्योंकि जो माजी होता है ना, उसे इसलिए माजी कहा जाता है क्योंकि वो माजी है, गुजरा हुआ वक्त। और गुजरा हुआ वक्त जैसे लौट कर नहीं आता, इसी तरह से गए हुए लोग वापस लौट कर कभी भी नहीं आते। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो किसी मकसद से आते हैं, और अगर जाते हैं तो आपके लिए कुछ छोड़ जाते हैं, एक तजुर्बा छोड़ जाते हैं, एक सोच छोड़ जाते हैं। और कहते हैं ना कि इंसान तजुर्बे से ही सीखता है, और आने वाले वक्त में आप वो गलतियां नहीं दोहराते जो कि आप गुजरे हुए वक्त में कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक और मसला है, दो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। एक ये हो जाती है कि हम आने वाले जो शख्स, हमारी ज़िंदगी में आने वाला जो शख्स है, हम उसमें वही खूबियाँ ढूंढते हैं जो कि पहले वाले शख्स में थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कभी भी समझौता नहीं कर पाते, क्योंकि हम जाते जो शख्स गुजर चुका है उसको हम भूल नहीं पाते, और हमें ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, कहीं शायद ये हमारे साथ वही बुरा ना कर दें, तो हम उस रिलेशन को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाते, उसे और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं।
1: सही, चलें बस यही था, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कॉल की है। बहुत शुक्रिया आपने मेरी कॉल पिक की।
0: नहीं नहीं, ज़रूर, आप हर हफ्ते हमारे लिए सवाल लेकर आए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर थोड़ी सी तमहीद बांध सकें, तो आपकी कॉल बंद होने के बाद भी थोड़ी सी बात करते हैं।
1: चलें, बहुत शुक्रिया जनाब,
0: बहुत शुक्रिया वासिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी बासित भाई, जो कि हम सब के लिए एक सवाल छोड़ गए हैं, आप सब के लिए भी छोड़ गए हैं, कि वक्त के साथ साथ हम अपने आप को आगे बढ़ क्यों नहीं सकते, वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमारे आड़े आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी एक नई ज़िंदगी हमारा एक राह देख रही है। जो लोग गुजर जाते हैं ना, वो आते ही चले जाने के लिए हैं। और अक्सर ये मिसाल मैं देता हूँ कि जो रिश्ते होते हैं ना, एक खूनी रिश्ते हैं, जो अल्लाह ताला ने, आपके बहन भाई हो गए, आपके माँ बाप हो गए, या आपकी औलाद हो गई, ये तीन एक ऐसे रिश्ते हैं जो कि खूनी रिश्ते होते हैं, जिससे नस्ल दर नस्ल आगे सिलसिला बढ़ता चला जाता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हम बनाते हैं, और जब हम वो बनाते हैं तो वो आरसी रिश्ते हैं, और एक ना एक दिन उन्होंने फना भी हो जाना है। चलिए जी, इसी के साथ सुनाते हैं आपको एक और खूबसूरत सा ट्रैक, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। पाकिस्तानी ट्रैक है, मजबूर और पल पल और झोल, इनका मैशअप।

0: did.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station.
3: That plays
4: foot tapping music.
5: Hazar 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

जी हाँ, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम ऑन रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैब। मैं हूँ जकी खान, आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्रोग्राम। आज का हमारा टॉपिक है, हमारी डिस्कशंस हैं, एज, उम्र, जिंदगी। जिंदगी प्यार का गीत है, ये गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर लौट कर आते हैं। प्यार का कहीं मत जाइए अब।

जी हाँ, ये ऐसे ही है कि जैसे हमें जीना पड़ेगा। वेलकम बैक, एक खूबसूरत से ट्रैक आपको सुनाया। अब बात कर रहे हैं हम आज एज पे, मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड के शो में हमारे तमाम सामाइन को, हमारे लिसनर्स को करते हैं खुश आमदेद। उम्र का मौजू मोहब्बत, शादी, तालीम और नई शुरुआत से भी गहरा ताल्लुक रखता है। हम अक्सर पूछते हैं इस उम्र में, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क होता है, कोई भी काम करने जाते हैं कहते हैं अब इस उम्र में करोगे, लेकिन शायद हमें पूछना चाहिए अगर फैसला जिम्मेदाराना, बाइज्जत और हकीकत पसंदीदा है तो सिर्फ उम्र उसे गलत क्यों बनाती है। नई शुरुआत का मतलब ये नहीं कि हम हकीकत को नजरअंदाज कर दें। जिस्मानी सेहत, माली सलाहियत और खानदानी जिम्मेदारियां अहम हैं, लेकिन हकीकत पसंद होना बहुत जरूरी है। और उम्मीद छोड़ देना, क्या यह सही बात है? अच्छी मनसूबाबंदी ख्वाब को छोटा नहीं करती, उसे मुमकिन बनाती है। शायद जवानी का मतलब सिर्फ कम उम्र होना नहीं, बल्कि सीखने के लिए तैयार रहना है। और शायद बुढ़ापे का आगाज सालों से नहीं, बल्कि उस दिन से होता है जब हम ये मान लेते हैं कि अब हम बदल नहीं सकते। वक्त तो हालात सबके मुख्तलिफ होते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल बदल सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपने कई लोग देखे होंगे कि एक उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो जाती है, दे आर अबाउट 40 एंड दे स्टार्ट एजुकेशन। और कहीं आपने देखे होंगे बहुत ही कम उम्र में होते हैं लेकिन बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ उम्र एक अतद है, यानी कि नंबर है। एट द सेम टाइम वी शुड अवॉइड टर्निंग एज इज जस्ट अ नंबर इनटू प्रेशर। पीपल डू नॉट हैव टू प्रूव देयर वर्थ बाय स्टेइंग कॉन्स्टेंटली प्रोडक्टिव, यूथफुल और एडवेंचरस। रेस्ट, स्लोअर लिविंग एंड चेंजिंग प्रायोरिटीज आर ऑल्सो वैलिड। वक्त के साथ साथ हमारी प्रायोरिटी चेंज होती हैं। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, कई सालों से उनसे बात नहीं हुई, उन्होंने मैसेज किया, मैंने कहा मैं आपको कॉल बैक करूंगा, और आज उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बदल गया इंसान। मैंने उनसे कहा कि मेरे दोस्त, इंसान नहीं बदला, ये वही है, बस हालात बदल गए हैं। अक्सर मिसाल देता हूँ कि इंसान नहीं बदलता, उसके हालात बदल जाते हैं। और कई लोगों का अगर फितरतन ही बदलना उनकी फितरत में है तो फिर आप उनको बदल भी नहीं सकते। क्या तालीम शुरू करने के लिए कभी बहुत देर हो जाती है? क्या बड़ी उम्र में साथी या मोहब्बत तलाश करने पर तनकीद होनी चाहिए? ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। कहते हैं कि आप इस उम्र में शादी करोगे, अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको छोड़कर चले गए या फिर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो क्या आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? क्या आप खुश नहीं रह सकते? ये एक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा एक टॉपिक है, इस पे भी यकीनन हम बात करेंगे। What dreams have you postponed because of your age? What would be one safe first step towards it? हाँ, यकीनन लाइफ को बिल्कुल संजीदा लेना चाहिए, लेकिन इतना भी संजीदा नहीं लेना चाहिए कि आप अपनी खुशियों को दूर छोड़ दें। किसी ने पूछा कि उम्र जो है वो जवान कैसे लगते हैं लोग अपनी उम्र से ज़्यादा, तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि वो अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं करते, तो अपनी लाइफ से एंटरटेनमेंट को कभी मत ख़त्म कीजिए, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट है ये आपको जवान रखती है, है ना? चलिए जी, इसी के साथ सुनाते हैं आपको एक और खूबसूरत सा ट्रैक। आप शामिल होना चाहें प्रोग्राम में तो अभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0115710971 पे, या हमें कॉल भी कर सकते हैं स्ट्रेट आफ्टर दिस ट्रैक। मेरे महबूब, कयामत होगी।
کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں، کچھ ایسے احساسات ہوتے ہیں، کچھ ایسا وقت ہماری زندگی میں آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ قیامت ہے یا پھر جنت ہے۔

आज रुसवा ये मोहब्बत तेरी गलियों में होगी। अब तो वो ना गलियां रही, ना वो जमाना रहा, ना वो लोग रहे, ना वो सोच रही, ना वो हालात रहे, क्या रहा? हम वही के वही हैं, हम वही हैं। जी हाँ, कुछ मजी सवालात हैं आपसे ये थॉट प्रोसेस के लिए है। हमारा सब वक्त थोड़ा कम बचा है, इस वक्त हुआ चला जाता है 8:44 यानी कि 8:44 हो चुके हैं और हमारा शो इख्तिताम पे पहुंच जाएगा एट 8:56। फिर कुछ एड्स होंगे और उसके बाद आपसे अलविदा मांगेंगे। सवाल ये है कि एट व्हाट एज डिड यू लर्न योर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन। आपको अपने आप से सवाल कीजिएगा कि जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया जो आपको लगा कि मैंने जिंदगी का कोई सबक हासिल कर लिया है। विच इज मोर वैल्यूएबल, यूथफुल एनर्जी और लाइफ एक्सपीरियंस ज्यादा कीमती क्या है, जवानी की तवानाई या जिंदगी का तजुर्बा? What would you tell to your younger self? आप अपने कम उम्र खुद को क्या मशवरा देंगे? What do you hope your older self will thanks for you? आप आज ऐसा क्या करना चाहते हैं जिस पर मुस्तकबिल में खुद को शुक्रिया अदा करेंगे? Name or stereotype about your age group that is unfair. ये सवालात हैं जो कि आप अपने आप से कीजिए, क्योंकि इस सवालात करने से इंसान को बाज़ औक़ात ना जवाब मिल जाता है और ऐसे जवाब मिलते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते। दिल का क्या करें साहेब, ये तो उन्हीं पे मरता है। इसी ट्रैक के साथ मिलते हैं इस ट्रैक के बाद।

0: ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: बिगर बिगर एंड बेटर बेटर द रेडियो स्टेशन फॉर पीपल हु लव म्यूजिक। 97.1 FM।

0: दीजिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।
12: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: Welcome. Radio Faza 97.1 FM.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention!
4: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG24LG में है।
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
7: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: You are listening to Radio Faza on 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू राज ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

0: hot.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station.
3: That plays
4: foot tapping music.
5: Huzzah 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुन
7: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
8: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
9: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
10: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
9: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
10: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
9: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
10: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
9: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
10: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
9: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
10: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
9: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
11: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.